0: का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की, लेकिन कोई जॉब नहीं किया था, तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्म कोई भी पत्रिका अखबार मतलब जो भी मिल गया वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को, पधारो।

0: पहुंच गए वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग. अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए. मतलब जो शैक्षणिक जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज़्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के,
1: मेरे
0: उसके बारे
1: को
0: में और क्यों पसंद है?
1: मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी.
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सबसे जुड़ी हुई है. सामाजिक समस्याएं,
0: हाँ.
1: स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्याविचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सबके ऊपर जो कहानियां लिखी है, तो मुझे वो बहुत टचिंग करती
0: लगते
1: है, बहुत
0: हैं.
1: हाँ भावपूर्ण होती है. और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ, कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो
0: हाँ
1: वो भी साहित्यिक में बहुत
0: अच्छा
1: ज्यादा
0: रुचि
1: पहुंची
0: रखते
1: हुई है, बहुत ज्यादा. हाँ,
0: अच्छा
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को उसमें मैं लिखने लगी. लिखते लिखते क्या हुआ,
0: हाँ
1: जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी
1: वॉकिंग डिस्टेंस पे,
0: हाँ
1: तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी.
0: हाँ
1: वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना,
0: हाँ
1: तो बस बस भगवान का चेहरा देखती थी. तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था,
0: अच्छा
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा.
0: हाँ हाँ
1: और पता लगा मैं तो वहां बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी,
0: अच्छा
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था. मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया,
0: हाँ
1: मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है.
0: जी
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी
0: अच्छा
1: फेसबुक पर. अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी.
0: अच्छा
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई
0: हाँ.
1: तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहां,
0: हाँ.
1: तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई,
0: हाँ.
1: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ. मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में वो
0: लिखते थे.
1: स्टोरी लिखती थी. और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी.
0: हाँ.
1: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा. फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है.
0: अच्छा
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें. फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता. कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ.
0: अच्छा
1: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया.
0: जी आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM. और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है. और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली.

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं, लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या वा?
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है
0: जी।
1: इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
0: जी,
1: हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छू ले, न रोको उड़ाने ये फलक छू ले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
0: वाह,
1: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान।
0: वाह, यस, वेरी नाइस। अभी ये कविता है तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें हाँ, भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी
0: हाँ,
1: तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार
1: मनाते थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और
0: अच्छा,
1: खिलाना पिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में
0: हाँ,
1: शेयर करता था
0: हाँ।
1: तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको
0: हाँ,
1: और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली।
0: है हाँ।
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो। क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
0: हाँ।
1: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा
0: अच्छा
1: है,
0: लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे
0: हाँ।
1: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
0: हाँ।
1: वो भी लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे थे।
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
0: हाँ।
1: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
0: हाँ।
1: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
0: हाँ।
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
0: जी।
1: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा। जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
0: जी।
1: मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
0: हाँ।
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
0: हाँ।
1: शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा,
1: छपी
0: छपी हाँ।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही
0: हाँ,
1: थी
0: हाँ।
1: एक जैसे ये है
0: आखर लिखता हाँ।
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
0: अच्छा।
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे।
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
0: अच्छा।
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
0: पढ़ना
1: लॉ करना है।
0: अच्छा।
1: मुझे आगे लॉ करना है
0: हाँ।
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया
0: अच्छा।
1: बस अब क्या और क्या करना है। मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा विदाउट पे करनी है।
0: हाँ।
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा
0: हाँ।
1: और उसमें मैं जाने लगी वन
0: अच्छा।
1: मंथ मैंने पढ़ाया
0: हाँ।
1: और उसमें जो था एक बच्चा भी था तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहता। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो
0: अच्छा।
1: वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई। 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी
0: अच्छा
1: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं। मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू
0: हाँ।
1: अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी आप।
0: अच्छा।
1: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में मैं हूँ।
0: क्या बात है
1: मतलब मैं वो पढ़ी थी उस समय खुशी की वजह से
0: हाँ।
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था
0: हाँ।
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
0: हाँ।
1: जैन मंदिर के बराबर में वो उनकी दूध
0: हाँ।
1: का गाय वगैरह रखते थे
0: हाँ।
1: तो वो जब लेते थे उनसे
0: हाँ।
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक
0: हाँ।
1: कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी।
0: अच्छा।
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया
0: हाँ।
1: कि उसने 12th पास किया।
0: क्या बात है।
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई
0: हाँ।
1: सेट हो गई
0: जी।
1: तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से
0: हाँ।
1: स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
0: हाँ, काम करते थे
1: हाँ। तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी
0: हाँ।
1: घर में रह के क्या करोगी ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ। मैं कब जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर हाँ, वो इसमें खुश है हाँ, वीआरएस लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
0: जी।
1: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें
0: हाँ,
1: क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था
0: जी,
1: सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और
0: बराबर,
1: बच्चे हाँ, भी बड़े हो गए अपनी नौकरी हाँ, चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ
0: हाँ,
1: तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
0: अच्छा,
1: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, आरएसएस के लोग थे
0: जी।
1: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
0: जी।
1: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
0: जी।
1: उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी हाँ, ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबारा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है और आप आइए, वहाँ आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
0: ठीक है,
1: वहाँ गए। वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी। फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
0: अच्छा,
1: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इनपे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
0: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
1: क्योंकि क्या है ना
0: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
1: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
0: डिप्रेशन में
1: से नहीं जाता
0: हाँ,
1: वो सोच कर चला जाता
0: है जी।
1: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी
0: उनका दुख दर्द देख के,
1: नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है
0: हाँ,
1: आपको यही छोड़ कर जाना होगा
0: हाँ,
1: यही छोड़ कर जाना होगा जो भी देखा है
0: जी।
1: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पड़ जाओगे क्या फायदा है।
0: बराबर।
1: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए
0: हाँ।
1: तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी
0: राइट हाँ।
1: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बस कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था
0: हाँ।
1: गिरे ना कहीं, और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था कैसे
0: रहते हैं
1: हम लोग, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी
0: जी।
1: वो लोग कैसे रह रहे हैं
0: हाँ।
1: तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
0: अच्छा,
1: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को हम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
0: वो समाज कार्य बढ़ता हाँ, गया आपका।
1: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम हाँ, लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से
0: हाँ,
1: और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है
0: तो
1: उनको सेव करना, उनको गाइड करना है
0: राइट हाँ,
1: तो वो भी
0: करते हैं।
1: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, काफी सारा काम होता था
0: बराबर,
1: और आके बस आराम
0: और आप ज्यादा
1: सोते थे
0: हाँ,
1: मतलब रिलैक्स होता था कि हमने हमारे
0: कुछ
1: हाथ से
0: तो
1: कुछ
0: किया
1: तो हुआ।
0: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं। ठीक है,
1: ठीक जी, थैंक
0: यू। आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे
1: आप बताओ।
0: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने
1: जिंदगी
0: के बारे में सुनते हैं,
1: कर लेगी छोटा सा है
0: जी,
1: चलेगा
0: या
1: जिंदगी है तो सब कुछ है कहते हाँ, है ना
0: जी।
1: जिंदगी, इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
0: जी। बिल्कुल।
1: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी
0: आज भी आई है,
1: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा। इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
2: क्या बात।
1: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई जिंदगी मैं तेरे लिए
2: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
1: नई आशा नए सपने नए संकल्प मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ। जिंदगी तेरे लिए
2: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का, उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में, स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ,
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ,
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ,
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ, वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मुझे जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को, पधारो

0: सजाया है।
1: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुँच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज़्यादा रुचि है तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आशा, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
2: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
1: जी,
2: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सबसे जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है तो उन सबके ऊपर जो कहानियाँ लिखी है तो मुझे वो बहुत टचिंग भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक ऐसे ही ना क्या हुआ, कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत
1: अच्छा
2: रुचि रखती हुई है, बहुत ज्यादा
1: अच्छा।
2: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ जुहू में रहते थे हम लोग तो वहाँ कृष्ण मंदिर था वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी। वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था
1: अच्छा,
2: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा, और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी
1: अच्छा,
2: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है
1: जी।
2: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी
1: अच्छा
2: फेसबुक पर, अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी
1: अच्छा,
2: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी, बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है
1: अच्छा,
2: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ
1: अच्छा,
2: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
1: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी, वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए, तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं
0: जी,
1: लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है
0: जी,
1: कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है
0: जी।
1: इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
0: जी,
1: हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
0: वाह,
1: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान।
0: वाह, यस, वेरी नाइस। अभी ये कविता तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें हाँ, भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हूँ। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी
0: हाँ,
1: तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार
1: मनाते थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और
0: अच्छा,
1: खिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में
0: हाँ,
1: शेयर करता था
0: हाँ।
1: तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको
0: हाँ,
1: और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली। निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो। क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
0: हाँ।
1: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा
0: अच्छा
1: है,
0: लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे। तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
0: हाँ।
1: वो भी लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
0: हाँ।
1: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी ये उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
0: हाँ।
1: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे, मैं आपको वो किस्सों में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
0: हाँ।
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया। तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा, जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
0: जी।
1: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
0: हाँ।
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
0: हाँ।
1: शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा,
1: छपी
0: छपी हाँ।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही
0: हाँ,
1: थी
0: हाँ।
1: एक जैसे ये है
0: आखर लिखता हाँ।
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
0: अच्छा।
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था
0: अच्छा।
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे को जो है
0: पढ़ना
1: लॉ करना है
0: अच्छा।
1: मुझे आगे लॉ करना है
0: हाँ।
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया
0: अच्छा।
1: बस अब क्या और क्या करना है? मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा विदाउट पे करनी है। तो
0: हाँ।
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा
0: हाँ।
1: और उसमें मैं जाने लगी, वन
0: अच्छा।
1: मंथ मैंने पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसमें जो था एक बच्चा भी था वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहूँ। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो
0: अच्छा।
1: वो घर आने लगा, मैंने उसको पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए
0: हाँ।
1: कुछ नहीं वो हो गया, मेरी शादी भी हो गई। 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी
0: अच्छा
1: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू?
0: हाँ।
1: अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर में बैठ के पढ़ाती थी आप
0: अच्छा।
1: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ, आया है नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में हूँ।
0: क्या बात है,
1: मतलब मैं वो पढ़ी थी उस समय खुशी की वजह से
0: हाँ।
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था
0: हाँ।
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
0: हाँ।
1: जैन मंदिर के बराबर में वो उनकी दूध
0: हाँ।
1: का गाय वगैरह रखते थे
0: हाँ।
1: तो वो जब लेते थे उनसे
0: हाँ।
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी, उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे
0: हाँ।
1: तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक कि वो चले जाते हैं, तुम इस बीच आ जाए करो, मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी
0: अच्छा।
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया
0: हाँ।
1: कि उसने 12th पास किया।
0: क्या बात है।
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई
0: हाँ।
1: सेट हो गई। तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से
0: हाँ।
1: स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
0: हाँ, काम करते थे
1: हाँ। तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी
0: हाँ।
1: घर में रह के क्या करोगी, ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे, सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ। मैंने कहा जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर वो इसमें खुश है वीआरएस लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
0: जी।
1: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
0: अच्छा।
1: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, आरएसएस के लोग थे
0: जी।
1: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
0: जी।
1: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
0: जी।
1: उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी, मैं ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबाड़ा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है और आप आइए, वहाँ आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
0: ठीक है।
1: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी। फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
0: अच्छा।
1: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इनपे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
0: बात करने से भी वो खुल जाते हैं और क्या है ना, थोड़ा इमोशनली अच्छे रहते हैं।
1: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
0: डिप्रेशन
1: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता है
0: जी।
1: फिर हम लोगों की एंकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी,
0: उनका दुख दर्द देख के
1: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है, आपको यही छोड़ कर जाना होगा, यही छोड़ कर जाना होगा जो भी देखा है, उनके साथ अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पड़ जाओगे क्या फायदा है।
0: बराबर।
1: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी,
0: राइट,
1: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, गिरे ना कहीं
0: जी।
1: और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था कैसे
0: रहते हैं
1: हम लोग, इतने बड़ों बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी, हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
0: अच्छा।
1: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे। बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
0: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
1: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है,
0: राइट,
1: तो वो भी
0: करते हैं।
1: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, काफी सारा काम होता था।
0: बराबर।
1: और आके बस आराम
0: से ज्यादा
1: सोते थे,
0: मतलब
1: बहुत रिलैक्स होता था कि हमने, हमारे हाथ से कुछ तो हुआ।
0: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं, ठीक है?
1: ठीक जी,
0: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे?
1: आप बताओ।
0: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में जिंदगी के बारे में सुनते हैं।
1: ये कर लेगी, छोटा सा है
0: जी,
1: चलेगा
0: या
1: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
0: जी,
1: जिंदगी, इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
0: जी। बिल्कुल।
1: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी,
0: आज भी आई है
1: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सर पे चढ़ा है शाम को पांव में उतर जाएगा। इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पांव पर रुक जाएगा।
0: क्या बात।
1: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पांव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई हूँ, जिंदगी मैं तेरे लिए
0: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
1: नई आशा नए सपने नए संकल्प मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
0: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।

0: हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका क से कवि। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में सुना कि किस तरीके से हमारे मित्र अभिजीत अयंग और राहुल सफर जी ने अपने कविता की जर्नी को, अपनी कवि की जर्नी को इस क से कवि के माध्यम से सुनाया, हमें बताया, तो आज हमारे साथ एक और इस हार में जुड़ने एक और मोती आ गए हैं। नाम है मोनिस वारसी। मोनिस जी अपने उम्र से बहुत ज्यादा गहरी बातें कह देते हैं, बहुत आसान और बहुत सहज लहज, सहज तरीके से। लहजा बहुत सिंपल सा पर बातें इतनी डीप और इतनी मीनिंगफुल कि शायद ये बातें करें तो हमें सोचने में इतना वक्त लग जाए कि क्या बात कही थी और क्या मतलब निकला, और वो प्रोसेस होने में और वो प्रोसेस होके रिजल्ट आने में इतना समय बीत जाता है कि दूसरी बात कैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो इंटरव्यू होगा ये बहुत ज्यादा उन सारी बातों को उजागर करेगा जिसमें शायद हम, जिस बारे में शायद हम सोचते नहीं है या जिस पहलू तक हमने जाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मोनिस जी स्वागत है आपका कैसे कभी में। मोनिस जी आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने लिखना कब शुरू किया?
1: लिखना एज इन एकदम से लिखता तो मैं शुरू से ही था। कभी नज़्में लिख दी, कभी एक लाइन लिख दिया, कभी कोई वर्ड लिख दिया। जैसे जो सीड है वो तो हमेशा पड़ा ही रहता है ना इंसान के अंदर।
0: करेक्ट।
1: जिस चीज का है उसे पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो मैंने प्रॉपर लिखना 2019 में शुरू किया। 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में जिसने मुझे लिखने के लिए उत्साहित किया कि लिखा जाए। और हर चीज के लिए कहते हैं ना कि स्पार्क की जरूरत होती है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, तो वो स्पार्क मेरी जिंदगी में आया किसी इंसान के तौर पर और मैं लिखना चालू किया। फिर रुका नहीं, कलम लिखते गया।
0: तो जब आपकी जिंदगी में वो स्पार्क आया तो उस वक्त क्या महसूस हुआ जिसने आपको किसी और मोड पर या किसी और मोड को चूज ना करते हुए सिर्फ लिखने की ओर मोड़ा?
1: लोग शब्द हम कलम का सहारा लेते ही इसीलिए उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता।
0: करेक्ट।
1: कि हम क्या फील कर रहे हैं, वो आदमी हमें मिला है, वो इंसान हमें मिला तो हम कैसा फील कर रहे हैं।
0: करेक्ट।
1: उस चीज को बायकॉट करने के लिए या बाईपास करने के लिए हम कलम उठाते हैं।
0: हाँ।
1: शायरों में यही होता है कि हम जो फील कर रहे होते हैं वो नहीं बता सकते, तो जो पॉसिबल चीज है, जो एक उस फीलिंग को टच कर सकती है उस चीज को, आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि आप भी लोगों को शायद ना पता, मुझे मालूम है कि आप भी लिखते हैं, तो उस फीलिंग को टच करने की जो सबसे इजी या उसके सबसे प्रॉक्सिमिटी में जो चीज जा सकती है वो शेर व शायरी मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो फील कर रहा हूँ वो तो शायद कोई ना जान पाए, शायद मुझे भी वो चीज एक्सप्लोर करने में टाइम लगे या हो सकता है मैं भी कभी ना जाना, मगर हाँ जितना हो सकता है उतना लिखते हैं तो निकलते ही। और आपको मालूम है कि प्रेम बहुत ही पाक और बहुत ही पवित्र चीज है, तो उसकी कोई
0: तुलना नहीं है।
1: तुलना नहीं है, कोई उसका वर्बल कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। जो हम कर पाते हैं बस लिख देते हैं कुछ।
0: तो जैसे कि आपने कहा कि कभी एक कविता लिख दी, कभी एक पैराग्राफ लिख दिया या कभी एक शब्द लिख दिया, तो कभी कोई एक ऐसा शब्द लिखा है जो आज तक वो शब्द ही रहा है, मतलब फिर उसके आगे कभी कुछ लिखा ही नहीं?
1: मेरा मैंने लिखा था एक मेरा।
0: हाँ।
1: अब वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ही पसंद है, जो उनकी मतलब डिवोशन है, जो उनका पूरा आत्मसमर्पण है, जो वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है बहुत ही ज्यादा। एक होता है कि किसी को पसंद करना, एक होता है किसी को हर दर्जे तक पसंद करना। तो मैंने एक ही सबसे पहला ही मैंने लिखा था मीरा, एक शब्द मेरी डायरी में अभी तक लिखा पड़ा हुआ मीरा। तो वही मुझे अभी तक फिलहाल तो वही याद आ रहा है कि एक ही शब्द से अगर काम चल जाए, क्योंकि वो एक शब्द है उसको खोलेंगे तो कम से कम 1000 किताबें आप लिख सकते हैं मीरा। जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका इश्क है कृष्ण को लेके, उस मोहब्बत को अगर टटोलने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि किसी और डायमेंशन में आ गए हैं।
0: करेक्ट।
1: डायमेंशन शायद इश्क का ही है।
0: और शायद वो डायमेंशन खुली आंखों से देखा भी नहीं जाएगा।
1: वो तो भाई आशिक के लिए आशिक की बात है।
0: तो फिर मीरा को बाद में आपने पढ़ा, आपने वो एक वर्ड लिखकर छोड़ दिया, फिर उस शख्स को जानने की आपने कोशिश की कि क्या था क्या नहीं, क्या पढ़ा फिर मीरा के बारे में?
1: मीरा के बारे में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे कुछ इतना ये इस चीज को मैं जानता हूँ कि उनकी जो उनका जो इश्क है वो जिस घर से आती थी उसमें क्या हुआ, फिर कृष्ण के जो प्रति उनका जो प्रेम था वो कितना किस दर्जे तक गया ये मुझे मालूम है, खत्म कर दिया उन्होंने अपने आप को ये मुझे मालूम है, और काशी के लिए जाना इतना काफी मुझे अच्छा लगा ये चीज, और वो मुझे हमेशा से पसंद है। जब मैंने क्लास 8 में उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तभी से वो मेरे मन में।
0: कितना खूबसूरत एहसास रहा होगा अगर जब हम मीरा को पढ़ते हम जानते हैं कि मीरा का सिर्फ श्री कृष्ण के लिए समर्पण था, उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी कि इन रिटर्न मुझे उनसे कुछ चाहिए, उनका सिर्फ यही था कि बस मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे भगवान मेरे प्रीतम मैं जिनसे प्रेम करती हूँ या मैं जिनके लिए पूरी समर्पित हूँ वो बस खाली इस चीज को जान ले। लेकिन आजकल ऐसा है कि दुनिया पूरी शो ऑफ के इस चक्कर गई है, मतलब प्रेम, हाँ प्रेम, प्रेम को समझती है कि शो ऑफ है, मतलब जब तक आप गिफ्ट्स ना दे दे, जब तक आप कुछ भेंट ना दे दे, कुछ दे ना दे, इसको लोग प्यार समझते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे?
1: मैंने इसी को मद्देनजर, मतलब इसी को नजर में रखते हुए एक शेर लिखा था कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
0: तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
1: अगर ये बात है असरार तो तेरा शहर कभी महसूस हो।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो मैंने मीरा को नजर में रख के ये शेर लिखा था मैंने कि जब सेल्फलेस चीजें हैं ये किसी भी सेंचुरी की बात नहीं, ये आज से 1000 साल भी कोई इश्क करेगा तो इसी फेज में, वो दरवाजा सेम है, इश्क का दरवाजा उतना ही बड़ा है उतना ही सेम है, उसी जगह पे वो शिफ्ट नहीं होता है कभी, वो वहीं पर जो भी आदमी इश्क करेगा चाहे वो मीरा हो चाहे शबीर हो चाहे उसको जाना उसी दरवाजे से तो वो फील कर सकता है। तो मैंने ये लिखा मीरा जी को
0: मद्देनजर रखते हुए कि
1: किसी चीज की जरूरत नहीं।
0: मैं भी मीरा इस कैरेक्टर से मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, ये कैरेक्टर मुझे इतना इंस्पायर करता है कि मैंने लिखा कि सब प्यार मोहब्बत मीरा है, रब की भी चाहत मीरा है, आशिक ने लिखा हर प्रेम का खत मीरा है, सब पंछी तारे मीरा है, सब पंछी सारे मीरा है, गगन में तारे मीरा है, जो जीत गए वो कृष्ण हुए, जो हार गए वो मीरा। लेकिन इश्क में यही है जो हार जाता है वही जीत जाता है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मीरा ने हार कर जो पा लिया वो शायद लोग जीत कर भी नहीं पा सकते अपनी जिंदगी में। एक उनका डिवोशन, एक उनका समर्पण इतना गहरा लगता है मुझे कि अगर आप मीरा के पैरेलल कुछ वर्ड कहना चाहे तो क्या कहेंगे? प्रेम को छोड़कर
1: मैं कहूंगा कि जो मुझे सबसे बेहतर उनका ये लगता है, जैसे आपने कहा कि सब हार गए
0: जो जीत गए वो कृष्ण हुए जो हार गए वो मेरे,
1: इसी मतलब आपने जो लिखा शायद मैं मतलब बता दूं लोगों को कि हार गए का मतलब ये थोड़ी है कि कोई जंग चल रही थी हार गए,
0: करेक्ट,
1: उन्होंने अपने सेल्फ को हरा दिया,
0: हाँ।
1: बोले तू कुछ है ही नहीं,
0: करेक्ट,
1: तितर बितर,
0: करेक्ट,
1: कोई मतलब नहीं है तेरा, क्या है मेरा,
0: हाँ।
1: क्या है शब्बीर, क्या है, कुछ नहीं, तो ये हार वो जीत से बेहतर है।
0: सही बात है, सही,
1: तो ये हार बहुत ही मतलब बहुत ही पवित्र है ये हार कि किसी के लिए हम हार जाए, प्रेम उसी में है जहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो हारने के बाद भी, तो मेरा तो सेटिस्फेक्शन है जब कृष्ण के दर्शन हो गए, तो क्या है?
0: वही एक दर्शन में सारी दुनिया छुपी है, देखा जाए तो सारी दुनिया उसी एक दर्शन में। तो मेरा एक सवाल था कि कभी आपने ये सोचा कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा भी होगा, एक डायमेंशन ऐसा भी होगा जहां शायद कृष्ण मीरा के होंगे, कभी ऐसा सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा होगा?
1: क्यों नहीं होगा, हम और आप एक दूसरे के हो सकते हैं, किसी न किसी दौर में, किसी न किसी जमाने में, अभी दुनिया में इतनी नफरतें हम और आप बैठे बात कर रहे हैं और इस बारे में इस टॉपिक में बात कर रहे हैं जिसका मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी को कि कोई दो लोग बैठ के आज के दौर में मीरा की बात करेंगे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा संभव है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट
0: है,
1: तो किसी न किसी वर्ल्ड में
0: किसी
1: न किसी वर्ल्ड में तो कृष्ण भी मीरा के आशिक होंगे,
0: हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
1: अब इसके बारे में हमें नॉलेज
0: वो तो जब इश्क बढ़कर डिवोशन के लेवल पे चले जाए तभी ये सब पॉसिबल
1: है। इसका रियल शब्दुल भाई ऐसा है कि वहां पे वो खुद ही मल्टीवर्स है, वो उसमें कभी आदमी बहुत दुख से भर जाता है, कभी बहुत सुख से भर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हर पल ऐसे कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे चलते रहता है। ये लोगों को लगेगा कि अरे

0: में टालना नहीं
1: है, करेक्ट,
0: आशिक कभी ऊपर भी रहेगा कभी
1: नीचे भी रहेगा,
0: वो मिजाज की बात है,
1: करेक्ट।
0: ऐसे ऐसे अशार आदमी देते हैं, लगे देती है तो नफरत करता है, मगर महबूब से कोई नफरत नहीं कर सकता,
1: महबूब बनाएंगे प्यार को
0: नहीं, गाली नहीं दे सकता,
1: जब
0: आशिक होगा तो किसी भी हाल में रखे वो ठीक है, फिर वो वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो वहाँ पे जो सरेंडर जो लेवल है वो अलग होता है, तो इसलिए मैंने मीरा सही आप पहले कबूत कराया भी।
1: लेकिन यही एक चीज है, आज से अगर आप 30-40 साल पहले चले जाओ और अभी आ जाओ, पहले लोग एक्सेप्टेंस में ज्यादा बिलीव करते थे, अब फोर्सफुली एक्सेप्टेंस में बिलीव करने लोग लगे हैं, कि पहले एक्सेप्टेंस ये होता कि अगर कोई कह देता कि नहीं है मुझे आपके प्रति प्रेम नहीं है, या मैं उस नजरिए से आपको नहीं देखता हूं, तो लोग समझ जाते कि ठीक है आप नहीं देखते हो मैं देखता हूं, तो वो मेरा एक तरफा मामला है आपके प्रति। लेकिन अभी लोग वैसे नहीं करते, अब ऐसा हो गया कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है?
0: दुनिया में 90% शायरों का एक तरफा ही मामला होता है और ये हमेशा चलता रहेगा। एक तरफा प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये कि उसको उस इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जेंडर इश्क का है
1: नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली
0: इश्क का कोई जेंडर नहीं है, मोहब्बत का कोई जेंडर नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हम लोग जो बात करते हैं कि शायर जितने भी हुए हैं उनका कहीं ना कहीं एक कांटा फंसा होता है जो गले से नहीं उतरता है किसी और के। तो ये जो आप कह रहे हैं कि, तो मैं मतलब इसका जवाब ऐसे ही देना चाहूंगा कि एक तरफा जो होता है यही सबसे मुझे सबसे मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में जो आदमी कर सकता है कि भाई मुझे नहीं जरूरत तेरी, फिर जस्टिफाई मतलब फिर जस्टिफाई कई सारी चीजें हो जाती हैं, कई सारी चीजें कि भाई तेरे हंसने से भी अगर मुझे तकलीफ थी, तेरे रोने से भी तकलीफ थी, या तेरे ये बात कहने से मुझे तकलीफ थी, चल वो भी हटा दिए, मैं अकेले कमरे में पड़ा हूँ तेरे से इश्क कर रहा हूँ। और वो इश्क पहुंचता है, मतलब हम सुनते आते हैं कि आप किसी को याद कर रहे हैं तो सामने वाला भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो भी आपको याद कर रहा हो, तो ऐसे ही आदमी कर लेता है, इश्क कर लेता है, और इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मगर आज पर जो है आज हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मतलब जिस्मों तक ही सीमित है, वो चीज थोड़ा मुझे अटपटा लगता है कि पता नहीं।
1: जैसे अभी आपने कहा कि चलो ये हटा दिया, वो हटा दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया, सब
0: फिर
1: कुछ
0: भी फिर भी।
1: ऐसे ही एक शायर थे मुझे बहुत पसंद है, जॉन एलिया। जॉन एलिया ने खुद को इतना तबाह कर लिया कि पढ़ते हैं तो पता चलता है उनको, या कुछ शायरों से सुना भी है, कि कई सालों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने, ना किसी मुशायरे में जाते थे, ना किसी से मिलते थे, ना कुछ मिलना जुलना होता था। फिर उनके दोस्त थे सलीम जाफरी, वो आए, कमरा खुला, देखे तो जॉन साहब के बाल बहुत बड़े लंबे लंबे, दांत गंदे हो चुके, बदन से बदबू आ रही है, इतना खुद को तबाह कर लिया। तो शायर इस वक्त क्या सोचता होगा, मतलब खुद को जब बंद कर लेता है सारी दुनिया से, सब मतलब रिश्ते नाते तोड़ दिया, नहीं मुझे दुनिया ही नहीं देखनी, और वो आके खाली कमरा बंद कर दिए है, 8-10 किताबें है, 4 दीवार है, जिसको 24 घंटा देख रहा है आदमी।
0: तो साथ में इसका जवाब खुद ही दिया है, एक अपने शेर में दिया इसका जवाब, कि कहते हैं क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, बैठो बुला कर
1: लाता हूँ। वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: तो ये उन्होंने खुद कह दिया, ये अब इसको मैं इलैबोरेट करूं या कोई भी दुनिया का आदमी इलैबोरेट करेगा, बहुत ही ज्यादा समय जाएगा इसमें, कि एक शख्स है जो अपने आप को इस हद तक तबाह कर चुका है कि सिर्फ और सिर्फ महबूब है उसके।
1: वही उनका शेर है ना, मैंने खुद को इतना तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।
0: और मलाल इसीलिए इसको आदमी दूसरे मतलब आज के लोग शायद दूसरे तरीके से समझे, मगर मेरा ग्लास सिर्फ इश्क है, मेरा मैं इश्क के चश्मे से ही चीजों को देखता हूँ। तो जो मिलिया साहब हो या कोई भी हो, तो ये जो इन्होंने कहा है कि क्या कहा मुझसे मिलने आया बैठो बुला के लाता, तो ये वही बात है कि मैं तो हूँ ही नहीं, खत्म। जैसे हम लोग एक वाक्य एक थोड़ा फोकलोर हम लोग सुनते हैं कि लैला से मिलने मजनू गए, तो मजनू ने दरवाजा खटखटाया, तो लैला ने पूछा कौन, तो बोले कैस, तो बोले जा। फिर दोबारा आए कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर लैला ने पूछा कि कौन, तो बोले कैस, बोले वापस।

0: फिर तीसरी बार जब आए वो तो पूछे कौन, मुझे पता नहीं। तब लैला ने दरवाजा खोला और गले मिली कि ये मैं ईद चाह रही थी, तू कौन है, मैं कौन हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: तू और मैं कौन होते इश्क में। इश्क में यूनियन का नाम इश्क है।
1: हाँ, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन तक सीमित
0: जाना,
1: एक हो जाना,
0: दो लोग एक। जैसे हम लोग अभी देखते हैं विवाह, कहते ना दो रूहों का मिलन है, दो मतलब आत्माओं का मिलन, ये हल्की बात नहीं। ये हमें मतलब हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इश्क ऐसा होता है, चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो चाहे हिंदू कल्चर हो कुछ भी हो, हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इसका ये, इसका ये, इसका वो। तो एक हो जाना, मीरा और कृष्ण में कुछ फर्क नहीं बचा। एक वाक्य और बताता हूँ आपको कि एक हो जाना क्या क्या होता है। कृष्ण भगवान जा रहे थे जंग पे महाभारत से पहले की बात है, तो राधा ने कहा कि कम से कम आप मुझे अपना लीजिए, पता नहीं क्या हो जाए जंग में। मैंने ऐसा सुना है और मेरे टीचर को बताया करते थे। तो कृष्ण ने कहा आप अपनी आंख बंद करिए राधा से, और कृष्ण पलटे और बोले कि आप खोलो। तो राधा ने देखा कि सामने एक और राधा
1: राधा खड़ी है। हाँ,
0: किससे किससे करूं, तू ही तो है।
1: हाँ,
0: मैं ही तो इस लेवल का अगर यूनियन है जो कि मतलब अभी तो
1: इसके बारे में सोचना भी
0: उम्मीद नहीं कर सकते, और जो कि गलत नहीं है। जिसको जितना देखो, मैंने बहुत ही अच्छे एक इंसान सुना था कि जिसका जितनी फोकस है, जितनी लाइट है, उसको उतना ही दिखेगा।
1: करेक्ट।
0: फोकस अगर 10 mm का है तो उसके 10 mm का एरिया ही दिखेगा। एक LED का फोकस अगर 1 km तक है तो उसको 1 किलोमीटर का ही रेडियस उसको दिखेगा।
1: इसमें
0: उनकी गलती नहीं, उनको बताया दूसरे तरीके से गया, उनको समझाया दूसरे तरीके से गया।
1: करेक्ट। और ये ऐसा भी है ना कि युग युग की बात है कि ऐसा युग आना ही था जो अब हम देख रहे हैं, ऐसा युग आना है और शायद इसके बाद और एक युग आएगा जो शायद इससे बुरा हो, है ना। तो ये सब युग आने ही वाले हैं, तो ये युग में ये होना था। तो चलो, हम खुश नसीब है कि जो पिछले युग में या उससे पिछले युग में जो हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और वो हमारे रूट्स में अभी भी है, और हम जो युग देख रहे हैं और हम आगे का भी सोच सकते हैं कि ऐसा भी युग आ सकता है। अब एक सवाल कि कोई एक ऐसी कविता जो लिखनी शुरू की, पूरी भी हुई, फिर उसे काट दिया, फिर उसे लिखा, फिर काट दिया, ऐसा कितने बार हुआ है?
0: मैं मतलब लिख के काटने वाली तो बात जो है बहुत सही है।
1: हाँ।
0: आदमी कभी कभी, मैं जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो मेरी उर्दू थोड़ी अच्छी ग्रिप है उर्दू पे, मगर उतनी भी अच्छी नहीं। तो कम से कम सैकड़ों बार ये होता है कि लाइन लिखे हुआ जो फील कर रहे थे वो पोर्ट्रे नहीं कर पाए पेज पे, काट दिए। फिर एक दिन बैठे कि यार वो लिख देता हूँ, काट दिए। कई बार हुआ, कम से कम 100-200 शेर तो आधे मतलब एक एक लाइन के पड़े,
1: सिर्फ एक मिसरा लिखा है। हाँ। उला लिखा, सानी नहीं मिला, सानी लिख दिया, उला नहीं मिला।
0: क्योंकि मैं मतलब यही सोच के, ये नहीं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, मेरे पास वाकई में मतलब लफ्ज नहीं है कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो क्या जस्टिफाई हो पाएंगे। तो मैं बहुत ही केयरफुल होकर कोई भी चीज लिखता हूँ, ऐसे मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दूं लिखने के लिए। तो बहुत बार हुआ।
1: राइटर्स ब्लॉक ऐसा कितना टाइम चलता है, मतलब बहुत महीने हो गए, दिन गुजर गए, साल हो गया, कुछ लिखाएंगे, ऐसा हुआ है?
0: बहुत बार होता है, बहुत ऐसा होता है जब जैसे, और इसमें किसी की गलती नहीं कि इसमें मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे पानी बह रहा है, किसी ने नलका रोक दिया, फिर अगर तुम कॉन्शियस हो नलका खोल दिया पानी गिरेगा, तो कुछ ऐसा ही है। मतलब मैं इसको ऐसा एकदम पर्टिकुलरली वर्ड में शायद मैं डिफाइन कर पाऊंगा। आपका सवाल बहुत प्यारा है, मगर शायद ऐसे ही है कुछ कि ब्लॉक तो चलता है। मेरा तो ऐसा है कि किसी का भी है 15-15, 20-20 दिन कुछ नहीं लिखता।
1: हाँ, मैं दो तीन 6-6 महीने मैंने नहीं लिखा।
0: तो ऐसे ही होता है, हम लोग के साथ होता है। ये इसलिए नहीं होता कि हमारा कुछ कंटेंट खत्म हो गया, हम मतलब भूल गए लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता, बस नहीं मन करता है। और लिखना तभी मजा आता है कि भाई वो जब दिल से निकले चीजें, तो वो शूटिंग भी दिल से,
1: जब कुछ आप पे तारी हो रहा हो, जब आप पे कुछ
0: नाजिल
1: हो रहा हो, जब आपने कुछ मांगा नहीं और ऊपर वाले ने आपने देना भर भर भर भर भर भर देना शुरू किया, और आप बैठे अपने यार ये आ रही है आ रही है आ रही है और हो गई हो गई, पूरी कविता हो गई एक मिनट के भीतर पूरी। हाँ फिर करेक्शन, फिर सोचते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लिखी गई बस उसमें करेक्शन भी नहीं करना। लेकिन फिर वो कविता का ऐसा भी मतलब होता है कि वो सुना भी नहीं पाते, फिर वो इंसान अपने एकांत में उसको पढ़ता है। जब एक कविता ऐसी लिखी जाती है हमसे कई बार कि वो हम सिर्फ एकांत में पढ़ते हैं, उसे दुनिया के लिए नहीं लिखते हैं, मतलब वो एक ब्रह्मास्त्र दिया होता है ऊपर वाले ने आपको। हाँ कि आप परेशान है तो पढ़ रहे हो, खुश हो तो पढ़ रहे हो, कुछ मिला है तो पढ़ रहे हो, कुछ खोया है तो पढ़ रहे हो। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है?
0: ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए और ऐसा होता है। जैसे एक जैसे जिस्म की एक खुराक है, हम खाना खाते हैं पानी पीते हैं, वैसे जो आपका इश्क है, जो आपका आपकी जो रूह है उसकी भी एक गिजा है, तो आप उसे वो बस पूरा करने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से जब वो भूख लगती है कि यार आज इश्क बहुत मजा रहा है तो वो पढ़ लिए या वो लिख दिए, कुछ ऐसा लिख दिए कि पढ़ लिए, तो वो होता है ऐसा। और वो चीज इतनी प्राइवेट होती है कि कुछ शेयर होते हैं,
1: कुछ शेयर बहुत, हाँ वो मतलब आप सुना ही नहीं सकते हो किसी को,
0: तो वो होते हैं वो, फिर उसमें कई बाउंड्रीज भी टूटती हैं, कई चीजें भी टूटती हैं, शायद जो नियम है कानून है वो भी टूटते हैं, तो इसलिए वो जहाँ है वहीं रहे ज्यादा बेहतर।
1: कभी कभी ऐसा कुछ लिखा और बाद में खुद की पीठ थपथपाई आती है, क्या लिख दिया मैंने,
0: एक शेयर लिखा था और शायद उर्दू में है, लोगों को पता नहीं कैसे लगे मगर मैं पढ़ दूंगा। आपको मालूम है वो वाला शेर मैंने आपको सुनाया था,
1: इरशाद।
0: कई चराग है रोशन, कई चराग है
1: रोशन,
0: बस उनकी जस्तजु से है असरार, तेरी ही जात थी अब तक जो दरख्शां।
1: वाह वाह वाह,
0: तेरी ही जात थी अब तक। मैं इसका थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता दूं लोगों को, ताकि कई चराग है रोशन तेरी जस्तजू से, मतलब ये है कि उनकी प्रेजेंस से कई लोग मुनव्वर हो गए, कई लोग उनकी प्रेजेंस से एकदम नहा लिए इश्क से, हर चीज से, बहुत खुशी से, हर चीज से, मगर असरार मेरा पेन नेम है असरार, तेरे में ही वो कमी थी जो तू कुछ नहीं फायदा उठा पाए उनकी उनकी प्रेजेंस से, उनके इश्क से, तो वो उतना लबरेज उतना मतलब डूब नहीं पाया उस चीज में जितना तुझे डूबना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत लोग सिर्फ उनकी परछाई से,
1: हाँ, यही मैं आपकी बातों से ये समझ रहा हूँ कि समझो एक नदी बह रही है, लेकिन सब हाथ धो रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बस ऐसे बैठ के ना नदी को देखते हैं,
0: नदी की धारा देख रहा
1: हूँ, बस मैं देख रहा हूँ, लेकिन देखते देखते में भी कुछ लोग वो पा लेते हैं जो शायद नदी का पानी पी के ना पाए।
0: बिल्कुल,
1: हाँ तो मैं, आप जब ये शेयर कह रहे थे और जब आप इसका प्रीफेस बता रहे थे, चीजें बता रहे थे, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, एक नदी बह रही है और पूरा गांव उमड़ा है उसका पानी पीने के लिए, लेकिन मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ,
0: कोई तो है कि नदी सोचती है कि कोई तो है,
1: मतलब क्या पानी पानी ऐसा बह रहा है, लोग पानी पी रहे हैं, अगर पीने से इन लोग इतने खुश है तो मैं इस चीज को देख रहा हूँ तो मुझे अंदर क्या खुशी महसूस हो रही है।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे सब लोग ने समझ लिए, सब लोग ने इश्क बटाया आपके महबूब ने, आपके महबूब ने सबको इश्क बांटा, उसके पास तो इतना इश्क है कि उसने सबको बांटा, फिर भी कम नहीं पड़ा, मगर आप सोचते थे कि मैं जाकर डिस्टर्ब तो नहीं कर
1: रहा हूँ।
0: ये एक अलग लेवल की खुशी होती है, कभी कभी गम भी होता है कि नहीं मुझे डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं उस वक्त जो मैं सोच रहा था वो बहुत ही प्योर था, अब शायद थोड़ा मटेरियलिस्टिक बात है कि नहीं मुझे डिस्टर्ब, मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे जाना चाहिए था, मगर
1: तो लेकिन यही तो प्रेम है कि एक एक आशिक जो है, एक आशिक जो परेशान है कि यार मैं क्या करूं,
0: आंख से आंख मिल गई
1: उनको, बस बस एक बार वो देख ले, उसने कुछ बस उसने कुछ,
0: जैसे मैंने इस पे भी एक शेर लिखा था, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, जब से देखी हमने होश में,
1: हां वाह वाह वाह,
0: जब से देखा है हमने होश में आया है।
1: मैंने भी एक शेर लिखा था, मैं ऐसा बैठा हुआ था तो मुझे मेरे गुरुजी ने देखा, उस टाइम पे देखे और मुस्कुराया, तो मैंने देखा और देख के बोला कि ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ, ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ है, खुदा का देखना मेरी तरफ। तो बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुजी मुझे देखने लगे, मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा रब मुझे देख रहा है,
0: इश्क तो प्योरेस्ट फॉर्म में,
1: हाँ तो ऐसे उतर गया मेरे अंदर, मैं बोला हाँ वो मोमेंट था मेरे लिए कि आ हा हा क्या क्या हो गया। मतलब इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है ना कि एक बार ऊपर वाला देख ले उसे, है ना।
0: बिल्कुल
1: है ना। तो वही तो आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी चीज है कि आपने लिखा रात में, उसको बहुत मतलब पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा और सुबह उठ के वो पेज को फाड़ के फेंक दिया। तो वो जर्नी जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब रात में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। मतलब अरे यार क्या लिख दिया मैं, और मन ही मन सोच रहे कि सुबह इसको सुनाना है लोगों को, और मतलब सिर्फ तारीफें लूटनी है। और सुबह हुई तो वो पन्ने को फाड़ के फेंक दिया।
0: ऐसा होता है जब और इसलिए भी होता है क्योंकि मैं मेरे गुरु जी बताया करते थे कि इश्क में इंसान इवॉल्व करता है। पर सेकंड उसकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, जो उसके जो इमिट हो रही है उसकी बॉडी से, उसकी फीलिंग से, उसके इमोशन से, वो चेंज होते हैं। अगर आशिक का मिजाज चेंज ना हो तो वो आशिक नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: क्योंकि इश्क जो है, हमें लगता है कि इश्क कंट्रोल देता है, नहीं, इश्क फ्रीडम देता है। इश्क अब वो इश्क है ही नहीं जो एक दूसरे को ग्रो ना करवा पाए। वो इश्क नहीं कि जो एक दूसरे को कब्जा रखे, एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ये करे, नहीं। इश्क जिस चीज में आप बेटर हैं आप ग्रो करें, जिस चीज में मैं बेटर हूँ मैं ग्रो करूँ, ये प्रॉपर मेरे हिसाब से इश्क की डेफिनेशन नहीं है। तो हम जो लिखते हैं वो उस स्टेज पे लिखते हैं, रात भर में या दो दिन बाद या तीन दिन बाद हम उस चीज से निकल कर दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं। तो हमें लगता है कि ये पुराना हो गया। नहीं, वो पुराना नहीं, वो किसी बंदे की जो बहुत ही प्यारा है आज भी, जो तुम्हारी स्टेज पे, जो तुम कल
1: थे ना, वहाँ
0: पे कोई और इंसान रह के जब वो पढ़ेगा तो उसको बहुत मजा आएगा।
1: हाँ, क्योंकि जिस फेज से तुम गुजरे हो उस फेज पे बाकी के लोगों को आना है।
0: मैंने बोला ना कि रास्ता दरवाजा भी है, इश्क का दरवाजा एक ही, उसको सब वहां से सबको गुजरना है। तो जहाँ जैसे आप फलाने पिलर पे थे, आप दो किलोमीटर पहले आपने वो शेर लिखा निर्वाणा से पहले, फिर एक किलोमीटर बचा वहां पे आपने कुछ शेर लिखा, फिर आपने दरवाजे पे जाकर कुछ शेर लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 किलोमीटर जो शेर आपने लिखा था पहले वो खराब
1: है। नहीं, करेक्ट।
0: वो जो लोग 5 किलोमीटर पहले से जो आ रहे होंगे उनको शेर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सबकी एक रेंज होती है। आप दरवाजे के उस पार जब निकल जाएंगे इश्क के पार, तब आप कुछ लिखेंगे तो और मजा आएगा लोगों को।
1: यही दुनिया को यही तो टटोलना कि दीवार के उस पार क्या है,
0: वो दरवाजे पार हो जाए, इश्क पार हो जाए।
1: तो यही इश्क और शेरो शायरी और नज्मों से याद आया बुल्ले शाह साहब। बुल्ले शाह साहब का कोई ऐसा किस्सा बताइए जिसमें इश्क की इंतहा पूरी तरीके से मतलब टूट चुकी हो।
0: बुल्ले शाह साहब का मुझे एक किस्सा याद आता है उनका, कि जो उनके गुरु जी थे वो थोड़ी समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर जात बिरादरी वालों को देखें, जात और बिरादरी वाली, तो उस तरीके से अगर मैं लोगों को मतलब आप अपनी बस पहुंचा पाऊं तो इस तरीके से करूंगा कि समझ लीजिए
1: सब्जी बेचने वाले थे। हाँ, मेरे हिसाब से इनायत शाह कादरी साहब,
0: इनायत शाह कादरी साहब उनके जो गुरु जी थे, और बुल्ले शाह जो मुसलमानों में सैयद होती है टॉप मोस्ट कैटेगरी, तो वो थे। तो एक दिन खाना खा रहे तो बुल्ले शाह के घर वालों ने कह दिया कि क्या भी सब्जी बेचने वाले से कचेला बन गया था, उसके पास क्या रखा है। तो बुल्ले शाह की के मतलब जबान से बात निकल गई कि अरे उन्होंने अपने घर से थोड़ी कुछ दिया है, सब अपना ही तो है। तो उनका ये कहना था कि उनकी सारी जो इश्क था, जो उनका सेक्रीफाइस था, जो भी था उनका, जो सरेंडर की जो होने की जो एबिलिटी थी, सब जो उनका रिवॉर्ड था सारा खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गए, तो इतना परेशान हो गए कि वो निकलते थे अपने गुरु जी की गलियों से, निकलते थे, सब चीज करते थे। यहाँ तक कि एक कोठा था उस रास्ते में जहाँ से उनके गुरुजी कभी कदार निकलते थे, तो वहाँ पे कोठे पे चले गए वो। तो वहाँ पे जो तवायफ थी तो उनसे उन्होंने कहा कि आज मैं नाचूंगा। तो बोले पागल वागल कैसे, ऐसा आप नाचेंगे, आप मतलब इतने बड़े मौलवी, आप आलिम है, मौलाना है, आप नाचेंगे। बोले नहीं, आज मेरा महबूब यहाँ से निकलेगा तो मैं नाचूंगा। पूरा दिन वो नाचे जब तक निकल नहीं गए, और इत्तेफाक से वो निकले भी नहीं। इतना इश्क में वो कि जहाँ पे नहाते थे, जो गुस्ल खाना होता है, जो वॉशरूम होता है, आज जो जहाँ पे आदमी
1: नहाता
0: है, तो जहाँ से पानी पहले इतना सिस्टम नहीं था ना, पाइप वाइप का, तो जहाँ पे नहा रहे थे उनके गुरुजी, वो जहाँ वो नहाने का पानी निकल रहा था वहां पे जाके बुल्ले शाह अपना सर लगा दिए, तो पानी वॉशरूम में भरने लगा। तो उनके गुरु जी बांस लिए, बांबू, और बांबू से पाइप को साफ करने लगे तो इतना सर पे घाव हो गया कि खून आने लगा वापस से, पूरा सर फट गया उनका। जब देखे खून आने लगा तो गुरु जी, और ये इम्तिहान लेने वाला मालिक ही है, और तो तब वो गए और दोबारा देखते हैं कि अरे हुल्ला ये तो तू है। तब उन्होंने उनको गले, ऐसे बहुत सारे वाक्य थे। जब उतना वो कुछ वक्फा, कुछ साल वो परेशान रहे, बहुत ज्यादा परेशान रहे मनाने के लिए। मैंने आपको मतलब मुख्तसर दो दो, दो वाक्य।
1: हाँ, वो तो उनकी गुरु जी के चौखट पर सर तोड़ दिए खुद का, क्या क्या नहीं किया।
0: आप सोचिए जब उनके हाथ से ही उनका खून निकला कि हाँ बाबू लेके पूरा फोड़ डाले उनका, तब उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ अब मेरी जो है प्राशिक, अब प्राशिक मेरा पूरा हुआ। वो तो चाहते थे कि मैं, मुझे मर, मैं मतलब किसी बहाने मर जाऊं, बुल्ले शाह चाहते थे मैं किसी बहाने मर जाऊं इसी रास्ते में।
1: क्या इस तरह की क्या समर्पण होगा, मतलब ऐसे ऐसे मतलब शिष्य और गुरु की कहानी जैसे एकलव्य की कहानी है, उनसे बड़ा धनुष अच्छे से कोई चला नहीं सकता था, धनुर्धर कोई नहीं था, लेकिन अपने गुरु के प्यार में अपना दे दिया अंगूठा भाई।
0: आमिर खुसरो निजामुद्दीन की मोहब्बत में,
1: हाँ,
0: राधा कृष्ण, मीरा कृष्ण, सब कितने सारे लोग हैं। लक्ष्मण का राम के प्रति
1: प्रेम, समर्पण था, जो प्रेम था,
0: बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ कुछ किस लेवल पे है, कुछ किसी लेवल पे है, कुछ किसी लेवल पे
1: है। हाँ, मतलब चीजें इतनी सारी है, लेकिन मेन मसला, मेन जो मामला जहाँ बिगड़ता है कि आजकल के यूथ को ये चीजें, इन चीजों का अभाव हो गया, ये चीजें मिल नहीं रही है। ये चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल, जिसे आप चले गए, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आजकल की जो यूथ है वो किसी और चीज से इंस्पायर है, जिन चीजों को शायद वो इंस्पायर होने जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते। आज भी अगर वो अपने रूट्स को सुने, अपने रूट्स को पढ़े, अपने रूट्स को जाने, तो मुझे यकीन है कि चीजें फिर वो पुरानी युग में ले जाएंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्यार मोहब्बत की बात हो गई, हमने जाना मीरा का समर्पण, बुल्ले शाह साहब का समर्पण, सबका समर्पण, आपको कभी किसी ने अपने प्रेम का इजहार किया और आपने उसको मना किया, उस वक्त दिल में जो एक टीस पैदा होती है, जैसे हमको पता है कि ये शख्स हमको आके पूछेगा और हम उसको मना करेंगे, लेकिन वो मना करने में भी ऐसा दिल दुखता है, जो जो पीड़ा उठती है दिल के अंदर, जो दर्द उठता है, उस वक्त कुछ कभी लिखा है आपने कि आपने किसी को मना कर दिया कि मैंने
0: लिखा नहीं, मैंने पैर छुए। और ये इतनी बेहतरीन फीलिंग है कि इतने सारे लोग, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन के अराउंड लोग हैं दुनिया में, और कोई एक इंसान, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, एक इंसान आपको पसंद करता है दुनिया में, तो कितनी ये सौभाग्य की बात है कि इतना इतना प्रेम वो आप पे न्योछावर कर रही है, या कर रहा है, या कर रहे हैं, जो भी है, ये कितनी बड़ी बात है। ये कितने आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ही ज्यादा आप, आपका सौभाग्य है कि आपको एक इंसान जिसके पास पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाने के लिए हर चीज उसके पास है, कितना मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसने आपको चुना। तो ये अगर मुझसे कोई पूछे तो पैर छूने के काम, कि ऐ इंसान तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे पसंद किया, मगर मैं कहीं और,
1: मतलब
0: अपना मेरा ध्यान कहीं और, तो ये पैर छूने वाली बात है। मैंने कोई लिखा नहीं, मैंने जो आपका सवाल कर दिया आपने कोई लिखा।
1: अगर आप कुछ गा के इसको बयां कर सके तो कौन सा गाना आप गाएंगे इस चीज को बयां करने?
0: एक गाना समझ में आता है मुझे, वो आपकी नजरों में समझा
1: गया। हाँ, तो थोड़ा गा के सुनाइए, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छा गाते हो, तो आज आप मौजूद हो तो सब निकाला जाए थोड़ा थोड़ा करके।
0: इसका धुन कैसे गाने का मैं भूल गया।
1: आपकी नजरों में समझा,

0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। आप एक गाना गुनगुनाया करते थे, मैं अभी वो गाना भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगता था वो। लेकिन अभी एक और गाना आप गुनगुनाते हैं, कलंक।
1: हाँ, बहुत
0: ही वो अगर आप सुना दे तो वो गाने की जो कशिश है, मतलब अगर आज के रेट में कोई सॉन्ग अगर कुछ डिफाइन कर सके तो मुझे लगता है इस गाने में जो कुछ लाइनें लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है, कुछ चीजें लिखी है, अगर उसको इंसान सोच विचार कर तवज्जो दे थोड़ी उन चीजों पे, तो शायद उसके प्रेम को देखने के प्रेम को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो अगर आपको गुनगुनाए तो
1: बीच की हैं कुछ लाइनें, जैसे

0: तेरा मैं तेरा हूँ।
1: तो ये
2: सब
1: है
2: शायद
1: बहुत ही प्यारे
2: शायर। क्या मतलब, ऊपर वाले की महिमा भी देखो, एक आदमी को हाइट दे दी, हाँ एक आदमी को चेहरा दे दिया, पर्सनालिटी दे दी, लिखना दे दिया, गाना दे दिया, और मतलब क्या अलग अलग महिमा है ऊपर वाले की। हाँ काश हमारा गला ऐसा होता, हम गले से ना बिना। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं मतलब शो के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ एक दो सवाल और फिर इजाजत आपसे। तो अब ये जानेंगे हम कि बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मिटाया, बहुत कुछ लिखकर अपने लिए रखा, कुछ शायद किसी को सुनाया, कोई इम्प्रेस भी हुआ होगा, लेकिन कभी एक ऐसा दौर आया जिंदगी में जब सोचा कि अब नहीं लिखना है, अब सब खत्म करना है, ये क्या कुछ नहीं,
1: मतलब ऐसा जो ब्लॉक आता है ये
2: ब्लॉक नहीं,
1: उसके अलावा बात है। आप क्या पूछ रहे हैं, उसके अलावा की बात ही करूंगा। मैंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि ये ब्लॉक की बात नहीं कर रहे शब्बीर भाई, कि नहीं नहीं लिखने का मन नहीं करना ये अलग बात है, नहीं लिखूंगा ये अलग बात है, या कुछ नहीं लिखना हो रहा है वो अलग बात है, मतलब कई कई सारी चीजें। नहीं लिखने का मन तभी करता है इंसान का, जैसे मैंने बताया कि शिकायतें ज्यादा हो जाती है, महबूब से शिकायतें ज्यादा हो जाती है और कुछ मन नहीं करता कि हटाओ हटाओ, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता, ये इत्तेफाक ये है कि ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता। ये होता नहीं कि महबूब क्या बुराई नहीं कर सकते, आप या तो इश्क करें या तो फिर बुराई कर लें,
2: दोनों नहीं कर सकते।
1: अरे तो एक एक जगह पे दो चीज रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना।
2: हाँ, एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती, सही बात,
1: कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इश्क है तो इश्क है, नफरत है तो नफरत है, एक एक दिल में दो चीज कैसे रहेंगे शब्द।
2: नहीं लेकिन एक मोड़ आता है ऐसा कि मतलब जब नफरत है और वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है प्यार में, तो वो क्या मतलब मामला होता है कि मतलब एक आप चल रहे एक अलग डायमेंशन पे चल रहे हैं, है ना, मतलब नफरत यानी आदमी मरा हुआ पड़ा है, फिर उससे प्यार हो गया, नहीं वो जिंदा हो गया, मतलब एक मुरझाए हुए फूल को फिर से उसकी खूबसूरती में लाना, तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा प्यार में एक शायर के नजरिए से।
1: एक शायर की नजर जैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा शेर तो नहीं है, मुझे उतना नहीं है शेर, मगर मेरे सब बच्चे हैं, मैंने लिखा तेरे दिल की दीवारों का भी भला हो असरार, तेरे दिल की दीवारों
2: का भी भला हो असरार,
1: ये बड़ी बात है जो उनको संभाले रखा है।
2: वाह वाह,
1: कि मैंने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें इश्क में खड़ी कर दी कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते इस मिजाज में। बाकी फ्रीडम की बात तो अलग है, मगर ये भी होता है कि भाई कितनी भी नफरत कर लें मगर हम जाके लड़ेंगे उसी दीवार से, इधर उधर वो एक एक एक एक मंजिला घर है इश्क, हमें रहना उसी में,
2: चार दीवारें एक छत है लेकिन उसमें सर इधर जा रहे तो इधर लगेगा, इधर
1: कभी गुस्सा
2: तो वही मतलब चार दीवारें बना रही है, गुस्सा है तो सर फोड़ रहे और प्यार है तो उसको ही चूम रहे हैं,
1: बहुत बहुत अच्छी तरीके से।
2: वाह वाह
1: वाह, वही है
2: क्या एक राइटर, मतलब राइटर्स को ऐसे देखा गया अक्सर कि इनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, जैसे एक शायर थे मजाज साहब की, जब मैंने कहानी सुनी कि बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ साइड में, नाम नहीं लूंगा मैं उस यूनिवर्सिटी का, उसमें वो प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर, उर्दू के प्रोफेसर, उनको उसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से प्यार हो गया और अब वो प्रोफेसर माने नहीं, तो मजाज साहब नौकरी छोड़ के शायरी करने लगे, लेकिन कैसी शायरी, ऐसी शायरी नहीं कि चलो जाके मुशायरा पढ़ते लोगों से पैसा, वो इतने टूट गए प्रेम में, इतने पागल हो गए कि बस कोई थोड़ी शराब पिला दे तो उसको और पूरी रात बैठ के शायरी सुना, तो उनका हाल ऐसा हो गया कि ऐसा करते रहे मुशायरे गए नहीं, पैसे खत्म हो गए, पैसे ही नहीं, अब कोई आदमी क्या कर रहा है कि चलो लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, मजाज मिल गया, मजाज को बुला लिया, बिठा दिया, थोड़ी चाय पिला दी, चलो सुनाओ, अब उनको एक एक दो घंटा सुना रहे। एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने पकड़ा उनको दिल्ली में, एकदम कड़ाके की सर्दी, एकदम खतरनाक ठंड, जहां पे मतलब बिना शॉल विल के आप निकलो तो कपकपा जाओ, एकदम ऐसे कड़क हो जाओ, पूरी रात लोगों ने उनको शराब पिलाई, शायरी सुनी और रात के लगभग 2-2.5 बजे उनको छोड़ के रस्ते पे चले गए। वो शराब के नशे में इतने धुत हो गए कि सुबह पता चला कि मजाज नहीं रहे दुनिया में, ऐसा वक्त आया। तो क्या शायर किसी से प्यार करते करते मर जाता है। हाँ, ये शायद हमारे मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या मरने के बाद भी शायद उसी शख्स को दूसरी दुनिया से भी चाहता होगा?
1: जो मतलब जो इस दुनिया में किसी को नहीं पा सकता वो वहां पर नहीं पा सकता। और पाने की जो बात है ये बहुत ही, मैंने आपको बताया ना कि यूनियन यही होना है इस, हमें मतलब अगर ये जरूरी ना होता, ये फेज जरूरी ना होता तो हमें पैदा नहीं किया जाता।
2: ओके,
1: वही हमको मिला दिया था ना जब वहां पे दो आत्माएं थी, वहीं मिल लेते, क्या दिक्कत थी। मगर यहाँ यहाँ करके मिलने में और यहाँ मेहनत करके मिलने में और वहाँ मिलने में फर्क। तो इश्क पहली बात तो अधूरा नहीं है, अगर आप इश्क कह देते हैं तो वो अधूरा बचा ही। मैं एक तरफा इसको अधूरा नहीं मानता, ये तो आदमी पूरा टूट गया, बर्बाद हो गया, मर गया। तो इश्क वो ऊपर वाला उनको नवाज देता है, यहीं पे वो इतना दे देता है इश्क। जैसे इश्क भी कई कई कैटेगरीज हैं, जैसे आदमी करते करते करते करते करते करते फिर इंसान को, मैंने बोला ना इंसान को इंसान की जरूरत रही नहीं जाती। मीरा को कृष्ण के बिना जिस्म से मोहब्बत इसीलिए हो पाई क्योंकि उनको इश्क के माने बहुत कायदे से पता थे कि मुझे जिस्म नहीं चाहिए। तो इसमें मतलब जिस्म की जरूरत नहीं है। और इसी दुनिया में आदमी पा लिए, मीरा ने इसी दुनिया में कृष्ण को पाया और इस तरह से पाया कि वो मतलब ईश्वर के रूप में उनको मिले। ऐसा नहीं मिला कि कोई उनको कोई बॉयफ्रेंड है कैसे क्या है।
2: हाँ, उनका मतलब प्रेम के प्रति निराकार वाली भावना थी, कोई आकार में नहीं।
1: अल्टीमेट गोल जो है वो मैं मतलब एट दी एंड ऑफ द टाइम यही है कि भाई आपको सुकून कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा सुकून ईश्वर की बाहों में, मतलब हमारे मालिक की बाहों में। अगर मैं मतलब एकदम एंड रिजल्ट बता दूं इश्क का, अगर मेरे से कोई पूछे कि इश्क का एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई दुनिया बनी है शब्बीर भाई मोहब्बत से। दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए है, मोहब्बत करने के लिए बनी है। जितना हो सके लोगों से, मैं कहता हूँ प्यार करिए आप लोगों से, अपने पेड़ पौधों को प्यार करिए, अपने छत को प्यार करिए, अपने एसी को प्यार करिए, अपने बॉस को प्यार कीजिए, सबको प्यार करें। इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है भाई, तब एटम बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अट्रैक्ट हुए आके, सब अलग अलग। जब दुनिया बनी, बिग बैंग हुआ तो सारी चीजें अलग थी, सब इधर उधर घूम रहे थे, फिर इन लोगों ने सोचा कि अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हुए तो एटम बने, फिर कई सारे एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, कुछ मॉलिक्यूल मिले तो कंपाउंड बना, बनते बनते हम बन गए,
2: हम बन गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
1: तो ये यूनियन का ही जो दुनिया है, वो यूनियन का ही एक समझ लीजिए स्वरूप है। अगर हम आज दो मैग्नेट रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मैग्नेट, पूरी दुनिया ही ऐसे काम करती है, हमें मिलना ही है, यूनियन ही है। तो जो मरने के बाद जो अपनी करेगी वो यही मिल जाते हैं, चाहे आखिरी सांस में मिलाए मालिक। मगर आदमी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, शिक्षा मेरा ऐसा मानना है कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उससे एक ना एक बार चाहे आखिरी सांस में मिले, मिलता ही सकता, वो मालिक बहुत ही बहुत रहम वाला है, वो मिला देता है। तुम जिससे मोहब्बत करोगे, तुम एक, अगर मुझे लगता है एक लाइट से अगर तुम उस लेवल की मोहब्बत कर दोगे तो जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो लाइट तुम्हारे सामने खड़ी होगी।
2: हाँ, वो तो सही बात है, वो तो सही बात
1: तो
2: है।
1: तो यही जवाब है मेरा, और
2: वही मुझे भी यही लगता है कि प्रेम का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है, उसको किसी भी फॉर्म, आप प्रेम को किसी भी फॉर्म में पा सकते हैं। एक इंसान अपने पेट से प्यार कर सकता है, कोई अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको इतना क्लीन रखेगा घर को कि यार इतना भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ये उसका प्यार ही तो है उसके घर के प्रति। तो अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर जिंदगी में आप राइटर नहीं बनते, कुछ लिखते नहीं, तो क्या करते?
1: यार लिखते नहीं तो मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, कभी मजदूरी कर लेते। मगर ये कुछ चीजें, जैसे मैं गाता भी अच्छा हूँ, मतलब ऑनेस्टी अगर दिखाऊं मैं इस जवाब को देने के प्रति, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मगर नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं लिखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गा लेता हूँ। तो मेरे सारे सारे काम मेरे इश्क से ही रिलेटेड है। मैं कुछ ना करता तो इश्क, वो एक
2: कुछ नहीं करता तो इश्क करता है ना,
1: करता तो कुछ नहीं करता तो शायद फिर इश्क करता, और कुछ नहीं करता, मुझे इश्क ही सूट करता है, मैं वही करता, मैं उसमें ज्यादा माहिर।
2: अच्छा,
1: और सबको मैं सबको मतलब सबको सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इश्क करें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग से मोहब्बत करें, अपने एनवायरनमेंट से मोहब्बत करें, अपने इकोसिस्टम से मोहब्बत करें, अपने बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करें, अपने वॉचमैन से मोहब्बत करें, अपने गार्ड से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें, प्यार बांटो यार,
2: इश्क करें, प्यार करें। इसका मतलब यह नहीं जाके बोला, जस्ट दैट यू नीड टू बी मोर ह्यूमन more gets bent towards the humanity
1: than anything.
2: Yeah, than anything gets bent towards humanity. Just get closer to just be the pure soul who can help, be kind, be positive, आपका पॉजिटिव होना भी शायद किसी को एक ऐसे नेगेटिव जोन से बाहर निकाले जिससे वो सालों से जूझ रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव।
1: मैं यही बताता हूँ कि जब जो हम जो वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर लव, हमें मतलब ये बनाया ही इसीलिए गया कि आप प्यार करें, हमें प्यार से बनाया गया शब्बीर भाई। आप एक जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है आप उसको देखिए प्लासेंटा से क्या क्या आता है, कितना न्यूट्रिशन आता है, प्यार नहीं तो क्या है। मैं तो हर चीज को इश्क से देखता हूँ यार, इश्क ही मेरा चश्मा है, मैंने बताया पहले आपको, मैं उसी नजर से देखता हूँ चीजों को, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। मुझे अंधा आदमी भी खूबसूरत लगता है, मुझे किसी के हाथ पैर ना हो फिर भी खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत खूबसूरती है इस दुनिया में, ये दुनिया में खूबसूरती के अलावा कुछ है ही नहीं।
2: वाह, बहुत खूबसूरत। इससे अच्छी क्या ही एंड हो सकता था हमारे पॉडकास्ट का कि हम आए इश्क पे, हमने दुनिया को खूबसूरत कहा और न जाने कितने अलग अलग इश्क के पहलू बताए, कितने अलग अलग उसके स्टेजेस बताए, उसकी कैटेगरीज बताई, कैसे हमने अलग अलग एग्जांपल बताए कि किस तरीके से मीरा का डिवोशन, बुल्ले शाह साहब का डिवोशन और अलग अलग डिवोशन, इन सारे डिवोशंस ने मिलकर एक ही सीख दी है लोगों को कि यू शुड बी वेरी काइंडफुल एंड वेरी मच लवेबल, दैट योर लव शुड गेट स्प्रेड इन एंटायर वर्ल्ड, इट शुड नॉट गेट बाउंडेड। ये बाउंड नहीं रहना चाहिए या आप इसको क्लोज फॉर्म में ना रखें। इफ यू हैव समथिंग टू गिव प्लीज गिव इट बैक, आप दो, क्योंकि आपने थोड़ा दिया तो वो बहुत ज्यादा फॉर्म में बनके आपके पास ही लौटेगा। लेकिन जब आप एक इंसान तभी अपने जिंदगी में आगे बढ़ता है जब वो अपने अंदर की चीजों को खाली करता है, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक आपके अंदर फिर से आप कुछ भर नहीं सकते।
1: बर्तन उतना ही बड़ा है, उसको खाली करते रहिए, नई चीजें एब्जॉर्ब करिए, नई चीजें, प्यार ऐसी चीज है कि आपको नए नए एक्सपीरियंस होते रहेंगे। ठहरा हुआ पानी सब जाता है,
2: ठहरे हुए पानी में कीड़े मकोड़े सब आने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल या फिर या परसों या जब कभी समय मिले हम फिर आएंगे एक नए कवि को लेकर, एक नई प्रतिभा को लेकर, एक नए कॉन्फिडेंस को लेकर आपके समक्ष। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे एंड करता हूँ इस शो को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना भाई? दोस्तों का हालचाल पूछना मींस अपनापन जताना होता है, और अपनापन जताना मतलब स्वाद का जायका निभाने वाली बात है, है कि नहीं? तो चलिए, अपनापन जताने के लिए हमें एक बहाना मिल गया है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ऋषि पंचमी, और इस ऋषि पंचमी के दिन हमारे महाराष्ट्र में बनती है एक पौष्टिक भाजी। इसमें सीजनल वेजिटेबल्स और कंदमूलों का उपयोग किया जाता है, और खास बात ये है कि इसमें सिर्फ वही सब्जियों का इस्तेमाल होता है जिन्हें उगाने में बैल या किसी जानवर की मेहनत का प्रयोग नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक और बिना कांदा लहसुन वाली एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी है। कद्दू मींस लाल भोपला, तुरई मींस दोड़का, खीरा, भिंडी, ताजा मक्का मींस भुट्टा और मूंगफली, ऐसी चीजों को बिना कांदा लहसुन का तड़का लगाकर इस ऋषि भाजी को बनाया जाता है। चलिए अब हम ऋषि भाजी की रेसिपी को सुनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कसा हुआ नारियल पाव कटोरी, हरी मिर्च 2, आलू मींस अरबी के पत्ते बारीक काटकर आधा कटोरी, मटर के दाने आधा कटोरी, कटी हुई वाल पापड़ी आधा कटोरी, कद्दू मींस लाल भोपड़ा आधा कटोरी, बॉइल्ड मकई के दाने आधा कटोरी, तोरई मींस दोड़का आधा कटोरी, खीरा मींस ककड़ी के टुकड़े पाव कटोरी, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, इमली का पल्प 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, पानी आवश्यकता के अनुसार, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले हम इस ऋषि जी भाजी का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हम मिक्सर के जार में ताजा नारियल और हरी मिर्ची को डालकर पीस लेंगे। इसे अच्छे से ब्लेंड करके हम भाजी के लिए मसाला बना लेंगे। फिर हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई, उसमें हम गरम करेंगे देसी घी। घी गरम होने के बाद हम उसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं जीरा। जीरा को चटकने दीजिए। फिर हम उसमें डालेंगे आलूची पाने, इसे लगभग 1 मिनट तक भून लेना है। उसके बाद हम डालेंगे वाल पापड़ी, इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे कद्दू, तोरी, मकई के दाने, खीरा और हरी मटर के दाने। इन्हें अच्छे से भूनकर लगभग 2 मिनट तक चलाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और नारियल वाला मसाला, उसके साथ नमक और इमली का पल्प, इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे बनाते समय प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा पानी मींस लगभग आधा ग्लास पानी डालकर हमें इसे पका लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सब्जियाँ मॉइस्चर वाली हैं, इसलिए इसे पकाते समय ज्यादा पानी मत डालिए, और इमली का पल्प यूज करने से आलूची पाने मींस अरबी के पत्ते आपके गले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसे प्रेशर कुकर में सिर्फ 1 सीटी आने तक पका लेना है। इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले रुशिची भाजी को हमने पूरी तरह से पका लिया था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, स्वीट कॉर्न के दाने की बजाय आप साबुत स्वीट कॉर्न को उबालकर 2-3 टुकड़ों में काटकर इस रुशी की भाजी में डाल सकते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में हम डालेंगे तैयार रुशीची भाजी। उसके ऊपर हम थोड़ा सा ताजा नारियल कद्दूकस करके डाल लेंगे। भाई वाह, ये तो एकदम टेम्पटिंग दिख रहा है। फिर उसके साथ हम परोसेंगे गर्मा गर्म रोटी या फूली हुई गर्मा गर्म रोटी। उसके बाद हम भगवान को इसका भोग लगाएंगे। इस रुशीची भाजी की सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम इस पर तुलसी पत्र रख देंगे। ऐसा करने से भोग लगाने की मेथड बिल्कुल सही होगी। भगवान को भोग लगाने के बाद हम अपनों के साथ मिल बांट कर इस रुशीची भाजी का लुफ्त एकदम सात्विकता से उठाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इसे खाकर आपको हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व महसूस होगा। इसलिए इस रुशीची भाजी को आप जरूर बनाइए। अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहने का ये तरीका आप अपना ही लीजिए और अपनों के साथ मिल बांटकर अपनी खुशी को दोगुना कीजिए। इस रुशीची भाजी के लिए पेश है एक कविता। कविता का नाम है सात्विक भाजी। आरती के समय हो गए धार्मिक, रुशीची भाजी एकदम सात्विक। कद्दू मटर और भिंडी संग आ गई मकई, इसमें कांदा लहसुन नहीं है कतई। अरबी के साथ डाली थोड़ी सी इमली, रुक गई बारिश और आ गई तितली। मिर्ची के साथ डाला नारियल सफेद, अपनापन जताने से दूर होंगे मतभेद। गणेश चतुर्थी के बाद सेलिब्रेट होगी ऋषि पंचमी, ऋषि भाजी का टेस्ट एकदम मखमली। यूं ही देते रहिए अपनों का साथ, आचार्य 90 FM पर अपनेपन की बात। भाई त्योहार का मतलब होता है खुशियां, और आस पड़ोस में खुशियां बांटने का ये मौका आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के साथ हमने सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। इस बात पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य रेडी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई ऋषि पंचमी स्पेशल ऋषि जी भाजी तो हमने बना ली, अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। श्री गणेश जी के आगमन के साथ महालक्ष्मी मींस गौरी जी का भी आगमन होता है। गणेश चतुर्थी के तीसरे या चौथे दिन गौरी जी आ जाती है। 3 दिनों तक महालक्ष्मी मींस गौरी पूजन बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। इस समय घर की बेटियों को बड़े प्यार से भोजन कराने की प्रथा है। पहले दिन गौरी आवाहन होता है, तब महाराष्ट्रियन लोग भाजी भाकरी मींस रोटी और सब्जी का भोग लगाते हैं। दूसरे दिन मुख्य पूजा होती है, तब महाराष्ट्रियन किचन में तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं, जैसे कि पूरणपोड़ी, खीर, पंचामृत, 5 प्रकार की सब्जियां, कचुंबर के प्रकार, दाल चावल और दिवाली पर बनने वाली मिठाइयां वगैरह वगैरह। इस दिन का सेलिब्रेशन एकदम खास होता है, क्योंकि गौरी भोजन का शुभ अवसर इसी दिन होता है। फिर तीसरे दिन आरती करके गौरी विसर्जन किया जाता है, तब दही भात का भोग लगाया जाता है। आचार्य 90 एफएम के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट पूरणपोड़ी। 11वीं शताब्दी के महाराष्ट्रीयन ग्रंथ चक्रदत्त में दाल और गुड़ के मीठे मिश्रण पूरण पाक का जिक्र किया है। पूरण मींस मीठी दाल और पोली मींस रोटी। मीठी दाल वाली रोटी इज इक्वल टू पूरण पोली। इसे गौरी पूजन, होली और गुड़ी पाड़वा जैसे शुभ अवसरों पर विशेष भोग के रूप में बनाया जाता है। वैसे हमारे गुजरात और दक्षिण भारत में भी पूरण पोली बनती है। चलिए अब हम पूरण पोली की रेसिपी को सुनते हैं। पूरण पोली बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। पूरण के लिए मींस स्टफिंग के लिए चना दाल 1 बड़ी कटोरी, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, पानी 3 कटोरी, तेल 1 चम्मच, ब्राउन गुड़ 1 कटोरी। ब्राउन गुड़ येलो के हिसाब से ज्यादा हेल्दी है। जायफल पाउडर 1/2 चम्मच, इलायची पाउडर

पाव चम्मच, बादाम का पाउडर 2 चम्मच। अब आटा गूंथने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 2 कटोरी, मैदा 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच भर के नमक ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए पानी आटा गूंथने के लिए, देसी घी जरूरत के मुताबिक। चलिए अब हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। पूरन मींस स्टफिंग बनाने के लिए हम एक बड़ी कटोरी में चना दाल को पानी डालकर भिगोकर रखेंगे। इसे लगभग 2-3 घंटे तक भिगोकर साइड में रखना है। 2-3 घंटे के बाद उसमें थोड़ा पानी, हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डालकर प्रेशर कुकर में पकाना है। लगभग 5 सीटी होने तक हमें इसे पका लेना है। फिर हम गैस को बंद कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली 1/2 घंटे के बाद हम दाल को बाहर निकालेंगे। उस पकी हुई चना दाल से हम सारा पानी हटा देंगे। इस हटाए हुए पानी को आप चाहे तो कटाची आमटी इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। फिर हम उस पकी हुई दाल में थोड़ा सा गुड़ मिलाएंगे। इस मिश्रण को मोटे बेस वाली एक कढ़ाई में डालकर उसे धीमी आंच पर पका लेना है। थोड़ी देर में मींस लगभग 15 मिनट के बाद ये मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा। इस दौरान आप इसे चलाते रहिए, फिर ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। जब ये मिश्रण गोला टाइप बने तब हम गैस को बंद कर देंगे। हमें इसे ठंडा कर लेना है। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकालेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जायफल पाउडर, इलायची पाउडर और थोड़ी सी बादाम की पाउडर। यहां पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूं, साबुत इलायची को 2-4 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में डालिए। ऐसा करने से इलायची पाउडर एकदम आसानी से बनती है। जायफल का पाउडर यूज करने के बदले हम कद्दूकस किया हुआ जायफल इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बादाम का पाउडर ऐड करने से पूरन पोली का स्वाद और ज्यादा निखर जाता है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस स्टफिंग वाले मिश्रण को हम पूरन यंत्र में डालकर इसको स्मूथ बनाएंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। इस दौरान हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से उस स्टफिंग वाले मिश्रण से चना दाल का दाना निकल जाएगा। इस तरह से हमारा पूरन मींस स्टफिंग अब हो गया है तैयार। अब इस पूरन के हम नींबू के साइज के गोले बना देंगे। उसके बाद पूरन पोली का बाहरी हिस्सा मींस कोटिंग को बनाते हैं। एक मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे गेहूं का आटा और मैदा, फिर उसमें हम ऐड करेंगे हल्दी और नमक, फिर आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे गूथना है, मींस रेगुलर वाली रोटी जैसा आटा बनाना है। इसमें थोड़ा तेल मिलाकर हम फिर से गूथेंगे। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक इसे ढककर रखना है। ऐसा करने से रोटी का टेक्सचर अच्छा बन जाता है। उसके बाद सेम आलू पराठा की मेथड से हम पूरन पोली को बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा गूथा हुआ आटा लीजिए, उसे कटोरी का आकार दीजिए, उसके अंदर चना दाल वाली स्टफिंग को भर दीजिए, फिर उसे बड़ी सावधानी से हम बंद करेंगे, फिर चकला और बेलन की मदद से इसे एकदम प्यार से बेलना है। ऐसा करते समय हम थोड़ा आटा छिड़क देंगे। इस दौरान आप एक बात का खास ध्यान रखिए, पूरन पोली बेलते समय उसे आराम से ही बेलना है, उसके अंदर का स्टफिंग बाहर ना आए इसका ख्याल हमें रखना है। इस दौरान हम गैस पर तवा गरम करेंगे। अब तैयार पूरन पोली को एकदम संभाल कर उस तवे पर पलट देना है। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताती हूँ, गेहूं की रोटी या पूरन पोली बनाते समय उसे फुलाने के लिए एक ट्रिक है। हम तवे पर जब रोटी सेके तब 3-4 सेकंड के बाद उसे पलट देना है। फिर गैस की आंच को एकदम धीमा कर दीजिए। उसके बाद 1.5-2 मिनट तक इसे सेक लेना है। चम्मच की मदद से रोटी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर चेक कीजिए। जब तक उस रोटी के नीचे वाले हिस्से पर ब्लैक डॉट्स ना आए उसे पकने दीजिए। कुछ समय बाद रोटी पर डॉट्स दिखने लगेंगे, फिर एकदम संभाल कर उसे पलट दीजिए। अब गैस की फ्लेम को हाई मींस तेज कीजिए। ऐसा करने से रोटी एकदम पूरी तरह से फुल जाएगी, है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस तरह से सारी पूरन पोली हम बना लेंगे। हमें इन्हें ठंडा करने के लिए फैला कर रखना है। अब आगे क्या करना है, तो भाई आगे हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट, उसमें एकदम संभाल कर हम रखेंगे सारी पूरन पोली। उसके ऊपर हम लगाएंगे शुद्ध देसी घी, इसको मराठी में कहते हैं तुपाची धार सोडने। उसके साथ हम रखेंगे दूध की सुंदर सी कटोरी।
आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर सकते हैं। फिर उन पूरन पोली की सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम उस पर रखेंगे तुलसी पत्र। भाई वाह, इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। उसके बाद एकदम प्रसन्न मन से हम भगवान को पूरन पोली का भोग लगाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा करने से आप एकदम अच्छा ही फील करेंगे। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर देखिए तो जनाब। फिर अपनों के साथ मिल बांटकर इस पूरन पोली का लुफ्त उठाइए। कैसे? तो भाई सबसे पहले आप जमीन पर बैठ जाइए, फिर अपने साफ और धुले हुए हाथों से पूरन पोली का एक निवाला लीजिए, उसे दूध की कटोरी में डुबाइए, फिर पूरन पोली का टेक्सचर फील कीजिए, उसका अरोमा भी महसूस कीजिए, इलायची और जायफल की खुशबू, आहा हा, साथ में मीठी महक और दूध की सफेद बूंदे, क्या कॉम्बिनेशन है। फिर एकदम आराम से उसे अपने मुंह में स्वाहा कीजिए, आहा, क्या बात, एकदम स्मूथ और सिल्की टेक्सचर वाली ये पूरन पोली तो एकदम कमाल टेस्ट करती है, और अपनों के साथ खाने से ये और टेस्टी लगती है। इस पूरन पोली की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है पारंपरिक पूरन पोली। मनपसंद त्योहार गणपति और गौरी, गौरी पूजन में बनाई हमने पूरन पोली, खुशियों से भर गया सारा संसार, पूरन पोली पर किए हमने कई संस्कार, भिगोना पकाना और पीसना ये है खाने के संस्कार, अपनापन दिखाकर दूर कीजिए अहंकार, पूरन पोली में डाली चना दाल और गुड़, इसका टेस्ट लागे एकदम ही सुमधुर, पूरन पोली के साथ आया देसी घी, साथ में थोड़ा दूध एंड से नो टू टी, पूरन पोली का रूप जैसे मीठा पराठा, इसे पसंद करे जाट सिख और मराठा, इलायची के साथ थोड़ा सा जायफल, हमारी भारतीय संस्कृति सबको करे सफल, गौरी गणपति का आ गया त्योहार, सात्विकता से भरा हमारा भारतीय आहार। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाई एक सात्विक भाजी। किसी भी जानवर को जोते बिना उगने वाली सब्जियों को इस्तेमाल करके हमने रुशीची भाजी बनाई। कांदा लहसुन को यूज किए बगैर भी टेस्टी भाजी बन सकती है, इसे हमने बखूबी जाना। कद्दू, तोरी, मक्का, भिंडी, मटर, अरबी के पत्तों को नारियल और मिर्ची वाला मसाला हमने लगाया। फिर देसी घी में जीरे का तड़का लगाकर उसमें सारी सब्जियों को कम पानी में पकाया। अरबी के पत्तों के साथ हमने इमली का पल्प भी ऐड किया। इस प्रकार हमने एक सात्विक भाजी को बनाया। फिर हमने बनाई सबकी फेवरेट पूरन पोली। गेहूं और मैदा मिक्स करके आटा गूंथा, फिर उसमें ब्राउन गुड़ और पकी हुई चना दाल का स्टफिंग भरकर उसे पराठे का रूप दिया। इसके साथ दूध की कटोरी और तुपाची धार मींस देसी घी हमने पेश किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। इस तरह से हमने गौरी गणपति को हमारे आचार्य 90 FM के स्टूडियो में भोग लगाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप
जरूर कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्ती की परिभाषा को मैं करूंगी डिस्क्राइब। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे, काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता हूँ मिठाई।

कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से।

छोरी मिली छोरी तो मिली छोरी तो हुआ निहाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खैके पहन बनाओ रतबाला खुल जाए बंद अकल का

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

ऐसे कई सारे लोग ट्रैक पर जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ। तो यही कहानी है एक नए एडवेंचर की, एक नए एक्सपीरियंस की। तो चलिए सुनते हैं सात अनजान मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसे नहीं होते, और कुछ सफर बिल्कुल प्लान की तरह होते हैं। सितंबर का महीना था, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स पैक्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डेडलाइंस, रोड्स पर ट्रैफिक, और इन सब के बीच सात लोग थे जो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ वक्त के लिए भागना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रेक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया था। ट्रेक का नाम था सीक्रेट वैली, लोकेशन सीक्रेट, रूट सीक्रेट, और ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एडवेंचर गारंटीड। सैटरडे सुबह 5 बजे मुंबई सेंट्रल के बाहर सब पहली बार मिले। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। पहले पहुंचा 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस लैपटॉप और कोडिंग से भरी जिंदगी। उसके बाद रिया आई, शोल्डर पर कैमरा, फेस पर कॉन्फिडेंस, फोटोग्राफी उसका पैशन था। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आ गए, आरुष, मीरा, देव, सना और हाँ यश भी। सबने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी। तो हम ही है सीक्रेट वैली वाले, देव ने पूछा। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हो गई, और कुछ ही देर में ट्रैवलर वैन उन्हें लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी। 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों से बीच गुजरती रही। गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, और स्ट्रेंजेस धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। कबीर और रिया की बातें सबसे ज्यादा हो रही थी, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, लाइफ, ड्रीम्स। पता नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए। गाड़ी फाइनली एक छोटे से गांव में रुक गई। विलेज इतना रिमोट था कि मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था, सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और अजीब सी सीरियस आंखें। मैं बापुराव गाइड, उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोला, जो बोलो वही करना। देव हंस दिया, लगता है डेंजरस ट्रैक है। बापुराव ने जवाब दिया, जंगल में शॉर्टकट मत लेना, समझे। उस वक्त किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन शाम तक सबको समझ आने वाला था कि वो बार बार शॉर्टकट का नाम क्यों ले रहा था। ट्रेक शुरू हुई। नेचर ब्रेथ टेकिंग थी, हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, बर्ड साउंड्स, सब एंजॉय कर रहे थे। रिया हर 10 मिनट में फोटो क्लिक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। गाइस, सब रुक गए। जमीन पर एक पुराना DSLR कैमरा पड़ा था, पूरा डस्टी, जैसे सालों से यहां हो। कबीर ने उठाया, ये यहां क्या कर रहा है? देव क्यूरियोसिटी में था, मेमोरी कार्ड चेक करने लगा। कैमरा डेट था, लेकिन कार्ड बच गया था। देव ने पूछा, इसे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर उस कार्ड को कनेक्ट किया, फोटोज ओपन हुई और सब चुप हो गए। फोटोज में एक ट्रेकिंग ग्रुप था, 7 लोग, एग्जैक्टली इसी जंगल में, इसी रूट पर, इसी वैली में। सब स्माइल कर रहे थे, एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लास्ट फोटो में सबके रोंगटे खड़े हो गए। लास्ट फोटो में सिर्फ एक आदमी था, बाकी 6 लोग गायब थे। डेट लिखी थी सितंबर 2019। मीरा ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। लंच के दौरान वीक नेटवर्क मिल गया। सना ने गूगल सर्च की और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया।
2019 में इसी एरिया में एक ट्रेकिंग ग्रुप

मिसिंग हुआ था। सात लोग गए थे इस ट्रैक पर, सिर्फ एक वापस आया, बाकी कभी नहीं मिले। न्यूज आर्टिकल में लोकेशन भी सेम थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। देव बोला, कोइंसिडेंस है, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। बापूराव दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। कबीर उसके पास गया, अंकल आपको कुछ पता है क्या वो ग्रुप के बारे में? बापूराव कुछ सेकेंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और आगे चलो। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी से छुपा नहीं। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे रास्ते दो हिस्सों में बंटने वाले थे, एक सेफ ट्रायल और एक शॉर्टकट। वही शॉर्टकट जिसने सालों पहले छह लोगों को अपने अंदर समा लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे थे एक ट्रेकिंग की कहानी, इस ट्रेकिंग की कहानी में कैसे सात अनजान लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान बस इसी एक चीज के लिए आए थे कि वो एक नया एक्सपीरियंस देख पाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस महसूस कर पाएंगे, एक नई ट्रेकिंग पर जाएंगे, एक नई एनर्जी लाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको तो ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि उन्हें लगने लगा कि कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया अब। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM और अपने मनपसंद गानों को।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक आचार्य 90 FM पर। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेक अभी आगे जाके और मुश्किल होने वाली थी, तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। हवा में ठंडी नमी थी, जंगल और गहना होता जा रहा था, रास्ते धीरे धीरे मुश्किल होने लगे थे। कुछ देर बाद सब एक जंक्शन पर पहुंचे। रास्ते दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक वाइट ट्रायल और एक बहुत ही नैरो जंगल पाथ। बापूराव तुरंत बोला, सब लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन आरुष ने राइट साइड वाले पाथ को देखा, ये शॉर्टकट लग रहा है। बापूराव ने तुरंत मना किया, नहीं। यश हंस पड़ा, गाइड अंकल फिर से शॉर्टकट से डरा रहे हैं क्या? देव भी बोल पड़ा, मैप के हिसाब से तो ये रास्ता भी वैली में ही जा रहा है। बापूराव के चेहरा सीरियस हो गया, मैं 30 साल से यहाँ का गाइड हूँ, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन आरुष को यकीन था कि वो सही है। अंकल, अननेसेसरी लॉन्ग रूट क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। कबीर और सना गाइड की साइड थे, लेकिन आरुष, देव और यश शॉर्टकट के फेवर में। रिया न्यूट्रल थी और मीरा कंफ्यूज्ड। आखिर प्रेशर में आकर बापूराव मान गया, लेकिन उसने एक बात कही, एक ऐसी बात जो बाद में सबको याद आने वाली थी। उसने धीरे से कहा, जंगल हर बार माफ नहीं करता। शॉर्टकट ऑफिशियली सिर्फ 40 मिनट का था, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको अजीब लगने लगा। कबीर ने GPS चेक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई, कंपास ऐप भी वियर्ड डायरेक्शन दिखा रहा था। सना ने अपना फोन निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम। देव ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है जंगल एवेंजर्स लेवल का मैग्नेटिक फील्ड रखता है। किसी ने कहा, नहीं हंसना, बस हो गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। बापूराव बार बार आसपास देख रहा था, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। बापूराव ने धीरे से कहा, हम गलत जगह पे आ गए हैं। सब चुप। मतलब मैं भी नहीं जानता हम कहाँ हैं। एक सेकंड के लिए पूरे जंगल में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। गाइड जो 30 साल से यहां ट्रेक करा रहा था, वो खुद खो गया था। शाम होने लगी थी, क्लाउड्स नीचे उतरने लगे थे, विजिबिलिटी कम होने लगी थी। अब वापस जाना इम्पॉसिबल था। ग्रुप ने एक छोटी सी फ्लैट जगह देखकर कैंप लगाया, टेंट सेट्स हुए, स्मॉल बॉनफायर जलाया। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके अंदर फियर था, एक डर था। डिनर के वक्त भी यूजुअल जोक्स गायब थे। रिया ने धीरे से पूछा, बापूराव सच सच बताओ, 2019 में क्या हुआ था? बापूराव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ। बॉनफायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ग्रुप का गाइड नहीं था। सब फ्रीज हो गए। मतलब मैं उसी ग्रुप का गाइड था, उन्होंने भी शॉर्टकट ही लिया था। देव की आवाज निकल गई, फिर? बापूराव ने नीचे देखा, 6 लोग कभी नहीं मिले। बॉनफायर के पास साइलेंस छा गया। उस रात लगभग 1 बजे सब अपने टेंट्स में सो रहे थे, तभी क्रंच क्रंच क्रंच किसी के चलने की आवाज आई। कबीर की आंख खुल गई, उसने टेंट से बाहर झांका, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दूसरी साइड से, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई कैंप के पास घूम रहा हो। कबीर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला, उसके पीछे देव भी आ गया। देखा तूने? कबीर ने सिर हिलाया। दोनों ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और डार्कनेस। तभी देव का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर, क्या हुआ? उधर देख, लगभग 50 मीटर दूर
पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी, बस उसकी परछाई दिख रही थी, मोशनलेस, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च पर फोकस की और उसी सेकंड वो आदमी गायब हो गया, बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। फिर सुबह हुई। सुबह सबने डिसाइड किया कि बिना रुके जंगल से बाहर निकलना है। टेंशन अपने पीक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक क्लिफ मिला, डेंजरस, बहुत डेंजरस। नीचे हजारों की फिटकी खाई, रास्ता उस क्लिफ के एज से जा रहा था। सब बहुत केयरफुली चल रहे थे। सबसे आगे यश था, उसका कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ था। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके पैर के नीचे पत्थर टूट गया, क्रैक। सब कुछ एक सेकंड में हुआ। यश सीधा नीचे चला गया, उसका शरीर हवा में लटक गया। नीचे सिर्फ मौत, हजारों फीट की खाई। उसका हाथ एक ट्री रूट में अटक गया, बस वही उसे जिंदा रखे हुए था। यश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर ग्रिप छूट जाती तो बॉडी भी नहीं मिलती। रिया रो पड़ी, मीरा पैनिक में आ गई, सना चिल्लाई, कोई रोप निकालो। कबीर और आरुष तुरंत एक्शन में आए, उन्होंने इमरजेंसी रोप निकाली, लेकिन प्रॉब्लम थी, रूट कभी भी टूट सकती थी। यश की ग्रिप स्लिप हो रही थी, उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ मौत को सामने देख रहा था। कबीर क्लिफ की एज तक गया, सबने उसे पकड़ा। उसने रोप यश की तरफ फेंकी, पहली बार मिस, दूसरी बार मिस, तीसरी बार वो रोप यश ने पकड़ ली। लेकिन तभी जिस रूट को पकड़कर वो लटका था वो क्रैक करने लगी। कबीर, रूट टूट गई और यश नीचे गिरने लगा। लेकिन उसी सेकंड रोप टाइट हुई। कबीर और आरुष पूरी ताकत लगाकर रोप खींच रहे थे, उनके हाथ जल रहे थे, मसल शेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली यश को ऊपर खींच लिया गया। जैसे वो सेफ ग्राउंड पर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। आज उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सना को कुछ और नजर आया था, कुछ ऐसा जिसने 2019 वाली मिस्ट्री को

और भी ज़्यादा डेंजरस बना दिया। और उस डिस्कवरी के बाद जंगल के हर राज खुलना शुरू हो गए थे। यश अभी भी शौक में था, उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसे पानी दिया। तू ठीक है ना? यश ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, लेकिन सना की नजर अभी भी क्लिफ के नीचे थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। कबीर एक मिनट इधर आओ। कबीर एज पर आया, नीचे देखा और उसका गला सूख गया। लगभग 200 फीट नीचे पेड़ों और पत्थरों के बीच कुछ सफेद सा पड़ा था। पहले तो लगा पत्थर होगा, लेकिन जब रिया ने कैमरे का जूम यूज किया सबकी सांसें रुक गई। वो एक स्केलेटन था, इंसानी हड्डियों का ढांचा, और उसके पास एक फैडेड ट्रेकिंग बैकपैक। बैग पर पूरी धूल जमी हुई थी, लेकिन एक नाम अब भी पढ़ने लायक था, वीकेंड वंडरर्स। वही नाम जो 2019 वाले मिसिंग ट्रैक के ग्रुप का था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। देव ने धीरे से कहा, मतलब उनमें से कोई यहां गिरा था? बापूराव ने आंखें बंद कर दी, जैसे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक वीकेंड वंडरर्स करके ग्रुप था जो इनके पहले उसी ट्रैकिंग पर आया था, और उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन मिला था, 6 लोग गायब थे, लेकिन उसमें से दूसरे पर्सन का अब मानवीय शरीर ढांचा मिला है। ये देखकर इन 7 लोगों को अब बहुत डर आया है। कहानी का अगला हिस्सा हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के गुल्लक।

स्वागत है आपका आचार्य 90 FM में। ब्रेक के बाद शाम होने से पहले ग्रुप एक छोटी सी जगह पर रुक गया। सब आंसर्स चाहते थे। कबीर ने सीधे पूछा, बापूराव आप सच बताओ। बापूराव ने कुछ देर तक बोन फायर की आग को देखा और फिर बोला, 2019 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। सात लोग थे, यंग थे, एक्साइटेड थे, एडवेंचर के लिए पागल थे, बिल्कुल तुम लोगों के जैसे। उनकी आवाज भर गई। मैं गाइड था। मैं उन्हें शॉर्टकट लेने से रोकता रहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में हवा चल रही थी और बापूराव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रहा था। हम रास्ता भटक गए थे। दो दिन जंगल में घूमते रहे। एक एक करके लोग गायब होने लगे। मीरा ने पूछा, मतलब? बापूराव ने धीरे से कहा, पता नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे, जैसे जंगल उन्हें निगल लिया हो। सबके शरीर ठंड पड़ गए थे। उस रात मौसम अचानक से खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। बापूराव चिल्लाया, हमें शेल्टर ढूंढना होगा। ग्रुप ने टॉर्च निकाली। लगभग आधे घंटे बाद उनको एक केव मिली। बहुत पुरानी केव, अंधेरी और अजीब सी ठंडी। सब अंदर चले गए। बारिश बाहर टूट कर गिर रही थी। देव ने फ्लैश लाइट घुमाई और फिर वो फ्रीज हो गया। गाइस, सब उसकी तरफ देखा। केव के कोने में तीन पुराने बैकपैक्स पड़े थे, धूल से भरे हुए, और उसके पास एक रस्टेड टॉर्च और एक डायरी। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। रिया ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था अमन वर्मा, वही मिसिंग ग्रुप का मेंबर। रिया ने डायरी खोली। पेज गीले और पुराने थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ भी था जिसे पढ़ा जा सकता था। उसने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डे वन, हम शॉर्टकट में आ गए हैं। गाइड टेंशन में है, पर सब ठीक लग रहा है। डे टू, GPS काम नहीं कर रहा, हम लॉस्ट हो गए, सब नर्वस है। डे थ्री, कल रात किसी ने फुटस्टेप सुनी। हमने सोचा जानवर होगा, लेकिन फुटप्रिंट्स इंसान के थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। रिया ने अगला पेज खोला। आज रोहित गायब हो गया है। सुबह उसका टेंट खाली मिला। हमने हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सना का गला सूख गया। मेरा डायरी पकड़ने वाले हाथ को देख रही थी। उसमें हल्का सा कांप था। रिया ने अगला पेज खोला। हम सबको लगता है कि कोई हमें देख रहा है। रात को पेड़ों के बीच एक आदमी दिखता है। जब पास जाते हैं तो गायब हो जाता है। देव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। पेड़ के पीछे वाला आदमी? कबीर ने धीरे से हमें सर हिलाया। डायरी के लास्ट पेज सबसे अजीब था। उस पर लिखा था, अगर किसी को ये डायरी मिले, शॉर्टकट मत लेना, और अगर पेड़ों के बीच वो आदमी दिखे तो उसके पीछे मत जाना, वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा और अंदर ले जाएगा। उसके बाद सेंटेंस अधूरा था। पेज पर खून जैसा लगा था और वो डायरी वहीं खत्म हो गई। उसी वक्त केव के बाहर से आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सब फ्रीज हो गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी। बहुत पास, बहुत ही पास। क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो और उनका इंतजार कर रहा हो। रिया ने फ्लैशलाइट एंट्रेंस की तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। एंट्रेंस के बाहर बारिश में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा डार्कनेस में छुपा हुआ था और वो सीधा केव के अंदर देख रहा था उसकी तरफ। और फिर बिजली चमकी। एक सेकेंड के लिए उसका चेहरा दिख गया और बापूराव की चीख निकल गई, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चेहरे को उसने देखा, वो 2019 में गायब हुए ट्रेकर में से एक था। एक ऐसा आदमी जिसे मरे हुए 7 साल हो चुके थे। केव के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी, हवा चीख रही थी, और एंट्रेंस के बाहर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जैसे वो उन्हें देख रहा हो।
बापूराव के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कबीर, वो रोहित है, 2019 वाला रोहित। मीरा का गला सूख गया। मतलब वो मर चुका है। उसी वक्त बिजली फिर चमकी, सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने का इंतजार करना इम्पॉसिबल था। सबने डिसाइड किया कि बारिश कम होते ही निकलना होगा, लेकिन नेचर के अपने कुछ और प्लान्स थे। लगभग रात के 3 बजे जमीन हिलने लगी, पहले हल्का वाइब्रेशन, फिर जोर से क्रैक। केव के बाहर से पत्थर गिरने की आवाज आई, लैंडस्लाइड, सना चिल्लाई। सब अपने सामान उठाकर भागने लगे। केव के बाहर आते ही उन्होंने देखा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा था, पत्थर पेड़ों को कुचल रहे थे, मिट्टी का समंदर नीचे आ रहा था। सब जान बचाकर दौड़े और उस भागदौड़ में ग्रुप अलग हो गए। टीम 1 कबीर, रिया, सना। टीम 2 आरुष, देव, मीरा, यश और बाबूराव। सब जब बारिश रुकी, दोनों टीमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कबीर की टीम घंटों तक भटकती रही, तभी उन्हें एक पुरानी वॉच टावर जैसी स्ट्रक्चर दिखी, शायद ब्रिटिश टाइम की थी, हाफ ब्रोकन। अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। रिया ने डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू किए और फिर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, डेट सितंबर 2019, हेडलाइंस, मिसिंग ट्रेकिंग ग्रुप, मिस्ट्री डिपिंट्स। नीचे एक फोटो थी, 7 ट्रेकर्स और उनके बीच रोहित, वही आदमी। लेकिन आर्टिकल में एक शॉकिंग बात लिखी थी, रोहित कभी ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। तभी रिया को टावर के वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, ओल्ड चारकोल राइटिंग, शायद किसी ने सालों पहले लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल से बाहर का रास्ता वो दिखाता है, लेकिन सिर्फ उनको जो एक साथ रहते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, या तो रोहित हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें ट्रैप कर रहा है। उधर आरुष की टीम और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी, खाना खत्म हो चुका था, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यश मेंटली ब्रोकन था। शाम तक उन्हें फिर वही आदमी दिखा, पेड़ों के पीछे, वही कपड़े, वही चेहरा, वही साइलेंस। इस बार यश उसके पीछे भागने लगा। रुको, देव चिल्लाया, लेकिन यश नहीं रुका। अचानक वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया और यश भी। सुबह उसके पीछे दौड़े, 5 मिनट बाद यश मिला, एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर, बस एक कदम और सीधे मौत। यश रो रहा था, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। सबको डायरी की लास्ट लाइन याद आ गई, उसके पीछे मत जाना। 2 दिन हो चुके थे, सब थक चुके थे, होप ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तभी दोनों टीम्स को एक ही जगह एक ही चीज मिली, पत्थरों का बना हुआ एक एरो, डायरेक्शन दिखाता हुआ। कबीर की टीम ने भी देखा, आरुष की टीम ने भी देखा और दोनों एरोस के सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। सबने डिसाइड किया कि अब वो एरो को फॉलो करके ही जाएंगे। लगभग 4 घंटे चलने के बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल गई। सब इमोशनल हो गए, किसी ने किसी को हग किया, किसी ने किसी के आंखों में आंसू देखे। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जंगल से निकलना। एरो फॉलो करते गए। शाम के वक्त उन्हें कुछ दिखाई दिया, दूर, बहुत दूर, एक रोड, एक्चुअल रोड, सिविलाइजेशन, लाइफ, सेफ्टी, सब बाहर आने लगे और 10 मिनट बाद वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे। सब सेफ थे, रेस्क्यू टीम मिल गई, हॉस्पिटल चेकअप हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मानता कि जंगल में उन्हें एक ऐसा आदमी देखा जो शायद सालों पहले गायब हो चुका था। 3 दिन बाद मुंबई में लाइफ नॉर्मल होने लगी। कबीर ऑफिस में था, तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई, अननोन सेंडर, सब्जेक्ट था थैंक यू। कबीर ने मेल खोला, अंदर एक फोटो थी, ग्रुप फोटो, जंगल वाली। सब 7 लोग खड़े थे स्माइल करते हुए, लेकिन कबीर का दिल रुक गया। फोटो में 8 लोग थे, 7 ट्रेकर्स और उनके पीछे रोहित, वही रोहित, 2019 वाला ट्रेकर। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, इस बार सब घर पहुंच गए। कबीर का हाथ कांप गया, उसने सेंडर्स की डिटेल चेक की, ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कभी बनी ही नहीं।
उसने फोटो जूम की और उस वक्त उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी ठंड कर गई। रोहित कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कबीर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ महीने बाद बापूराव फिर से उस जंगल में गया अकेले। उसने उस जगह पर फूल रखे जहां 2019 वाले ट्रेकर्स लॉस्ट हुए थे। वापस मुड़ते वक्त उसने दूर पेड़ों के बीच एक आदमी देखा, वही ट्रेकिंग जैकेट, वही चेहरा, वही स्माइल। बापूराव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तू भी जा सकता है बेटा। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और जब उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था, एक रास्ता जो मैप्स पर आज भी नहीं मिलता। हर जंगल में बहुत भूत नहीं होते, हर जंगल में भूत नहीं होते। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने का इंतजार करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका था, सिर्फ एक बंदा लौटा था और ये सात लोग उसी ट्रैक पर जा गए थे और सातों के सातों वापस आ गए। कभी कभी कुछ एनर्जीज हमें हमारी मुसीबत से बाहर भी निकालती है और कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें मुसीबत में भी डाल देती है। तो ऐसे वक्त हमेशा एडवेंचर के बारे में ना सोचे, अपने दिल के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM, कहानियों के गुल्लक। मस्त मस्त गाने सुनिए, मस्त मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।

है कि नहीं? तो चलिए, अपनापन जताने के लिए हमें एक बहाना मिल गया है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ऋषि पंचमी, और इस ऋषि पंचमी के दिन हमारे महाराष्ट्र में बनती है एक पौष्टिक भाजी। इसमें सीजनल वेजिटेबल्स और कंदमूलों का उपयोग किया जाता है, और खास बात ये है कि इसमें सिर्फ वही सब्जियों का इस्तेमाल होता है जिन्हें उगाने में बैल या किसी जानवर की मेहनत का प्रयोग नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक और बिना कांदा लहसुन वाली एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी है। कद्दू मींस लाल भोपला, तुरई मींस दोड़का, खीरा, भिंडी, ताजा मक्का मींस भुट्टा और मूंगफली, ऐसी चीजों को बिना कांदा लहसुन का तड़का लगाकर इस ऋषि भाजी को बनाया जाता है। चलिए, अब हम ऋषि भाजी की रेसिपी को सुनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कसा हुआ नारियल पाव कटोरी, हरी मिर्च दो, आलू मींस अरबी के पत्ते बारीक काटकर आधा कटोरी, मटर के दाने आधा कटोरी, कटी हुई वाल पापड़ी आधा कटोरी, कद्दू मींस लाल भोपड़ा आधा कटोरी, बॉइल्ड मकई के दाने आधा कटोरी, तोरई मींस दोड़का आधा कटोरी, खीरा मींस ककड़ी के टुकड़े पाव कटोरी, देसी घी एक बड़ा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, इमली का पल्प दो बड़े चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग एक चम्मच नमक ले रही हूँ, पानी आवश्यकता के अनुसार, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। सबसे पहले हम इस ऋषि जी भाजी का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हम मिक्सर के जार में ताजा नारियल और हरी मिर्ची को डालकर पीस लेंगे। इसे अच्छे से ब्लेंड करके हम भाजी के लिए मसाला बना लेंगे। फिर हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई, उसमें हम गरम करेंगे देसी घी। घी गरम होने के बाद हम उसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं जीरा। जीरा को चटकने दीजिए। फिर हम उसमें डालेंगे आलूची पाने। इसे लगभग एक मिनट तक भून लेना है। उसके बाद हम डालेंगे वाल पापड़ी। इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे कद्दू, तोरी, मकई के दाने, खीरा और हरी मटर के दाने। इन्हें अच्छे से भूनकर लगभग दो मिनट तक चलाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और नारियल वाला मसाला, उसके साथ नमक और इमली का पल्प। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे बनाते समय प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा पानी मींस लगभग आधा ग्लास पानी डालकर हमें इसे पका लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सब्जियाँ मॉइस्चर वाली हैं, इसलिए इसे पकाते समय ज्यादा पानी मत डालिए, और इमली का पल्प यूज करने से आलूची पाने मींस अरबी के पत्ते आपके गले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसे प्रेशर कुकर में सिर्फ एक सीटी आने तक पका लेना है। इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले ऋषि जी भाजी को हमने पूरी तरह से पका लिया था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, स्वीट कॉर्न के दाने की बजाय आप साबुत स्वीट कॉर्न को उबालकर 2-3 टुकड़ों में काटकर इस ऋषि की भाजी में डाल सकते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में हम डालेंगे तैयार ऋषि की भाजी। उसके ऊपर हम थोड़ा सा ताजा नारियल कद्दूकस करके डाल लेंगे। भाई वाह, ये तो एकदम टेम्पटिंग दिख रहा है। फिर उसके साथ हम परोसेंगे गर्मा गर्म रोटी या फूली हुई गर्मा गर्म रोटी। उसके बाद हम भगवान को इसका भोग लगाएंगे। इस ऋषि की भाजी की सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम इस पर तुलसी पत्र रख देंगे। ऐसा करने से भोग लगाने की मेथड बिल्कुल सही होगी। भगवान को भोग लगाने के बाद हम अपनों के साथ मिल बांट कर इस ऋषि की भाजी का लुफ्त एकदम सात्विकता से उठाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इसे खाकर आपको हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व महसूस होगा। इसलिए इस ऋषि की भाजी को आप जरूर बनाइए। अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहने का ये तरीका आप अपना ही लीजिए और अपनों के साथ मिल बांटकर अपनी खुशी को दोगुना कीजिए। इस ऋषि की भाजी के लिए पेश है एक कविता। कविता का नाम है सात्विक भाजी। आरती के समय हो गए धार्मिक, ऋषि की भाजी एकदम सात्विक। कद्दू मटर और भिंडी संग आ गई मकई, इसमें कांदा लहसुन नहीं है कतई। अरबी के साथ डाली थोड़ी सी इमली, रुक गई बारिश और आ गई तितली। मिर्ची के साथ डाला नारियल सफेद, अपनापन जताने से दूर होंगे मतभेद। गणेश चतुर्थी के बाद सेलिब्रेट होगी ऋषि पंचमी, ऋषि भाजी का टेस्ट एकदम मखमली। यूं ही देते रहिए अपनों का साथ आचार्य 90 FM पर अपनेपन की बात। भाई त्योहार का मतलब होता है खुशियां, और आस पड़ोस में खुशियां बांटने का ये मौका आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के साथ हमने सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। इस बात पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य नेडी एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई ऋषि पंचमी स्पेशल ऋषि की भाजी तो हमने बना ली, अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। श्री गणेश जी के आगमन के साथ महालक्ष्मी मींस गौरी जी का भी आगमन होता है। गणेश चतुर्थी के तीसरे या चौथे दिन गौरी जी आ जाती है। 3 दिनों तक महालक्ष्मी मींस गौरी पूजन बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। इस समय घर की बेटियों को बड़े प्यार से भोजन कराने की प्रथा है। पहले दिन गौरी आवाहन होता है, तब महाराष्ट्रियन लोग भाजी भाकरी मींस रोटी और सब्जी का भोग लगाते हैं। दूसरे दिन मुख्य पूजा होती है, तब महाराष्ट्रियन किचन में तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं, जैसे कि पूरणपोड़ी, खीर, पंचामृत, 5 प्रकार की सब्जियां, कचुंबर के प्रकार, दाल चावल और दिवाली पर बनने वाली मिठाइयां वगैरह वगैरह। इस दिन का सेलिब्रेशन एकदम खास होता है क्योंकि गौरी भोजन का शुभ अवसर इसी दिन होता है। फिर तीसरे दिन आरती करके गौरी विसर्जन किया जाता है, तब दही भात का भोग लगाया जाता है। आचार्य 90 एफएम के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट पूरणपोड़ी। 11वीं शताब्दी के महाराष्ट्रीय ग्रंथ चक्रदत्त में दाल और गुड़ के मीठे मिश्रण पूरण पाक का जिक्र किया है। पूरण मींस मीठी दाल और पोली मींस रोटी। मीठी दाल वाली रोटी इज इक्वल टू पूरण पोली। इसे गौरी पूजन, होली और गुड़ी पाड़वा जैसे शुभ अवसरों पर विशेष भोग के रूप में बनाया जाता है। वैसे हमारे गुजरात और दक्षिण भारत में भी पूरण पोली बनती है। चलिए अब हम पूरण पोली की रेसिपी को सुनते हैं। पूरण पोली बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। पूरण के लिए मींस स्टफिंग के लिए चना दाल 1 बड़ी कटोरी, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, पानी 3 कटोरी, तेल 1 चम्मच, ब्राउन गुड़ 1 कटोरी। ब्राउन गुड़ येलो के हिसाब से ज्यादा हेल्दी है। जायफल पाउडर 1/2 चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, बादाम का पाउडर 2 चम्मच। अब आटा गूंथने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 2 कटोरी, मैदा 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच भर के नमक ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए पानी आटा गूंथने के लिए, देसी घी जरूरत के मुताबिक। चलिए अब हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। पूरण मींस स्टफिंग बनाने के लिए हम एक बड़ी कटोरी में चना दाल को पानी डालकर भिगोकर रखेंगे। इसे लगभग 2-3 घंटे तक भिगोकर साइड में रखना है। 2-3 घंटे के बाद उसमें थोड़ा पानी, हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डालकर प्रेशर कुकर में पकाना है। लगभग 5 सीटी होने तक हमें इसे पका लेना है। फिर हम गैस को बंद कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली 1/2 घंटे के बाद हम दाल को बाहर निकालेंगे। उस पकी हुई चना दाल से हम सारा पानी हटा देंगे। इस हटाए हुए पानी को आप चाहे तो कटाची आमटी इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। फिर हम उस पकी हुई दाल में थोड़ा सा गुड़ मिलाएंगे। इस मिश्रण को मोटे बेस वाली एक कढ़ाई में डालकर उसे धीमी आंच पर पका लेना है। थोड़ी देर में मींस लगभग 15 मिनट के बाद ये मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा। इस दौरान आप इसे चलाते रहिए, फिर ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। जब ये मिश्रण गोला टाइप बने तब हम गैस को बंद कर देंगे। हमें इसे ठंडा कर लेना है। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकालेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जायफल पाउडर, इलायची पाउडर और थोड़ी सी बादाम की पाउडर। यहां पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूं। साबुत इलायची को 2-4 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में डालिए। ऐसा करने से इलायची पाउडर एकदम आसानी से बनती है। जायफल का पाउडर यूज करने के बदले हम कद्दूकस किया हुआ जायफल इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बादाम का पाउडर ऐड करने से पूरन पोली का स्वाद और ज्यादा निखर जाता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस स्टफिंग वाले मिश्रण को हम पूरन यंत्र में डालकर इसको स्मूथ बनाएंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। इस दौरान हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से उस स्टफिंग वाले मिश्रण से चना दाल का दाना निकल जाएगा। इस तरह से हमारा पूरन मींस स्टफिंग अब हो गया है तैयार। अब इस पूरन के हम नींबू के साइज के गोले बना देंगे। उसके बाद पूरन पोली का बाहरी हिस्सा मींस कोटिंग को बनाते हैं। एक मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे गेहूं का आटा और मैदा। फिर उसमें हम ऐड करेंगे हल्दी और नमक। फिर आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे गूथना है, मींस रेगुलर वाली रोटी जैसा आटा बनाना है। इसमें थोड़ा तेल मिलाकर हम फिर से गूथेंगे। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक इसे ढककर रखना है। ऐसा करने से रोटी का टेक्सचर अच्छा बन जाता है। उसके बाद सेम आलू पराठा की मेथड से हम पूरन पोली को बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा गूथा हुआ आटा लीजिए, उसे कटोरी का आकार दीजिए, उसके अंदर चना दाल वाली स्टफिंग को भर दीजिए, फिर

बड़ी सावधानी से हम बंद करेंगे। फिर चकला और बेलन की मदद से इसे एकदम प्यार से बेलना है। ऐसा करते समय हम थोड़ा आटा छिड़क देंगे। इस दौरान आप एक बात का खास ध्यान रखिए, पूरन पोली बेलते समय उसे आराम से ही बेलना है। उसके अंदर का स्टफिंग बाहर ना आए इसका ख्याल हमें रखना है। इस दौरान हम गैस पर तवा गरम करेंगे। अब तैयार पूरन पोली को एकदम संभाल कर उस तवे पर पलट देना है। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताती हूँ, गेहूं की रोटी या पूरन पोली बनाते समय उसे फुलाने के लिए एक ट्रिक है। हम तवे पर जब रोटी सेके तब 3-4 सेकंड के बाद उसे पलट देना है। फिर गैस की आंच को एकदम धीमा कर दीजिए। उसके बाद 1.5-2 मिनट तक इसे सेक लेना है। चम्मच की मदद से रोटी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर चेक कीजिए। जब तक उस रोटी के नीचे वाले हिस्से पर ब्लैक डॉट्स ना आए उसे पकने दीजिए। कुछ समय बाद रोटी पर डॉट्स दिखने लगेंगे। फिर एकदम संभाल कर उसे पलट दीजिए। अब गैस की फ्लेम को हाई मींस तेज कीजिए। ऐसा करने से रोटी एकदम पूरी तरह से फुल जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। इस तरह से सारी पूरन पोली हम बना लेंगे। हमें इन्हें ठंडा करने के लिए फैला कर रखना है। अब आगे क्या करना है? तो भाई आगे हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उसमें एकदम संभाल कर हम रखेंगे सारी पूरन पोली। उसके ऊपर हम लगाएंगे शुद्ध देसी घी। इसको मराठी में कहते हैं तुपाची धार सोडने। उसके साथ हम रखेंगे दूध की सुंदर सी कटोरी। आप चाहे तो उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर सकते हैं। फिर उन पूरन पोली की सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम उस पर रखेंगे तुलसी पत्र। भाई वाह, इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। उसके बाद एकदम प्रसन्न मन से हम भगवान को पूरन पोली का भोग लगाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा करने से आप एकदम अच्छा ही फील करेंगे। यकीन ना आए तो इसे एक बार बनाकर देखिए तो जनाब। फिर अपनों के साथ मिल बांटकर इस पूरन पोली का लुत्फ़ उठाइए। कैसे? तो भाई सबसे पहले आप जमीन पर बैठ जाइए, फिर अपने साफ और धुले हुए हाथों से पूरन पोली का एक निवाला लीजिए। उसे दूध की कटोरी में डुबाइए। फिर पूरन पोली का टेक्सचर फील कीजिए, उसका अरोमा भी महसूस कीजिए। इलायची और जायफल की खुशबू, आहा हा, साथ में मीठी महक और दूध की सफेद बूंदे, क्या कॉम्बिनेशन है। फिर एकदम आराम से उसे अपने मुंह में स्वाहा कीजिए। आहा, क्या बात, एकदम स्मूथ और सिल्की टेक्सचर वाली ये पूरन पोली तो एकदम कमाल टेस्ट करती है। और अपनों के साथ खाने से ये और टेस्टी लगती है। इस पूरन पोली की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है पारंपरिक पूरन पोली। मनपसंद त्योहार गणपति और गौरी, गौरी पूजन में बनाई हमने पूरन पोली। खुशियों से भर गया सारा संसार, पूरन पोली पर किए हमने कई संस्कार। भिगोना पकाना और पीसना ये है खाने के संस्कार। अपनापन दिखाकर दूर कीजिए अहंकार। पूरन पोली में डाली चना दाल और गुड़, इसका टेस्ट लागे एकदम ही सुमधुर। पूरन पोली के साथ आया देसी
घी, साथ में थोड़ा दूध एंड से नो टू टी। पूरणपोली का रूप जैसे मीठा पराठा, इसे पसंद करे जाट, सिख और मराठा। इलायची के साथ थोड़ा सा जायफल, हमारी भारतीय संस्कृति सबको करे सफल। गौरी गणपति का आ गया त्योहार, सात्विकता से भरा हमारा भारतीय आहार। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाई एक सात्विक भाजी। किसी भी जानवर को जोते बिना उगने वाली सब्जियों को इस्तेमाल करके हमने रुशीची भाजी बनाई। कांदा लहसुन को यूज किए बगैर भी टेस्टी भाजी बन सकती है, इसे हमने बखूबी जाना। कद्दू, तोरी, मक्का, भिंडी, मटर, अरबी के पत्तों को नारियल और मिर्ची वाला मसाला हमने लगाया। फिर देसी घी में जीरे का तड़का लगाकर उसमें सारी सब्जियों को कम पानी में पकाया। अरबी के पत्तों के साथ हमने इमली का पल्प भी ऐड किया। इस प्रकार हमने एक सात्विक भाजी को बनाया। फिर हमने बनाई सबकी फेवरेट पूरन पोली। गेहूं और मैदा मिक्स करके आटा गूथा, फिर उसमें ब्राउन गुड़ और पकी हुई चना दाल का स्टफिंग भरकर उसे पराठे का रूप दिया। इसके साथ दूध की कटोरी और तुपाची धार मींस देसी घी हमने पेश किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी, बिल्कुल किया। इस तरह से हमने गौरी गणपति को हमारे आचार्य 90 FM के स्टूडियो में भोग लगाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप जरूर कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्ती की परिभाषा को मैं करूंगी डिस्क्राइब। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

जय हिंद 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? इस गर्मी वाले सीजन से कुछ राहत मिली आपको? थोड़ी सी तो मिली ही होगी। वैसे आचार्य 90 FM के प्यारे ऑडियंस से मिलकर हमें तो खुशी ही मिलती है, क्योंकि आप हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्त और दोस्तों से मिलकर होने वाली खुशी का इजहार करना हमें बखूबी आता है। अर्ज किया है, अगर चलती रहूं मैं अपनी मंजिल की ओर तो हो सकती है इनमें से एक बात, या तो मिल जाएगी मंजिल मतलब ऑडियंस का साथ, या फिर यूं ही चलता रहेगा सफर और मिलूंगी आपसे शुक्रवार की शाम और सोमवार की दोपहर, जब साथ होंगे यहाँ ऑडियंस जी आप जैसे हम सफर, तब गर्मी की मार होगी धीरे धीरे बेअसर। स्वाद का जायका निभाने का ये वादा, मनोरंजन से भरपूर और गाने भी ज्यादा, खाने के माध्यम से दिल को लुभाना मींस अपनापन जताकर दोस्ती को निभाना। स्वागत है ऑडियंस जी आपका इस शो पर, नई रेसिपीज को लाई हूँ आप ही के लिए ढूंढ कर। भारतीय सीमा के रसोई वाले राज साथ में बजेंगे सुमधुर और सुरीले साज। हमारी आज की पहली रेसिपी है एक स्पेशल टाइप का लड्डू। इस लड्डू में इस्तेमाल होने वाली एक स्पेशल चीज गर्मी को मात देने के साथ हमारे देसी खाने को खूबसूरत भी बनाएगी। ये गर्मियों में शरीर को ठंडा रखती है, दिखने में मोतियों जैसे है और इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसे पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम, फालूदा और शरबत बनाते समय इसे यूज किया जाता है। जनाब सही पहचाना आपने, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सब्जा की। जब सब्जा को पानी में भिगोकर रखते हैं तब ये फूलकर जेली की तरह बनता है। सब्जा की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप सब्जा का सेवन हर रोज कीजिए। इससे एसिडिटी कंट्रोल में रहती है और हमारा वेट भी कंट्रोल में रहता है। अब हम इस सब्जा के लड्डू को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सब्जा के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, सब्जा के बीज 100 ग्राम, नारियल का पानी आवश्यकता के अनुसार। नारियल के पानी में हमें सब्जा के बीज को सोक करना है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 कटोरी भर के पानी मैं यहाँ ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए ताजा नारियल 1, हेल्दी वाला ब्राउन गुड 200 ग्राम, देसी घी 4 चम्मच, मिल्क मसाला 4 चम्मच या फिर काजू और बादाम 7-8। उसके साथ हमें जरूरत पड़ेगी काला मुनक्का 15 से 20, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, जायफल पाउडर 1 चुटकी भर। जायफल पाउडर को यूज करना ऑप्शनल है। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इसकी रेसिपी को सुनने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक बड़ी कटोरी लीजिए, फिर उसमें डालिए सब्जा के बीज। हमें सब्जा के बीज को भिगोना है। इसे ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम इन्हें नारियल के पानी में सोक करके कुछ टाइम के लिए साइड में रख देंगे। लगभग 2 घंटे तक सब्जा के बीज को नारियल के पानी में भिगोकर हमने रख दिया है। 2-3 घंटे के बाद वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। एक ट्रांसपेरेंट जेली टाइप टेक्सचर आपको जब दिखे तब समझ लीजिए कि बीज अब यूज करने के लिए सब्जा के बीज अब यूज करने के लिए रेडी हो गए हैं। उसके बाद हमें ताजा नारियल कद्दूकस करके लेना है, कद्दूकस मींस ग्रेटेड। फिर ब्राउन गुड को बारीक टुकड़ों में काटकर रेडी रखना है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो उन्हें पतले टुकड़ों में काटकर तैयार रखिए। हे भगवान, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। अब एक गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। सब्जा के लड्डू बनाने की तैयारी तो हो गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले आप लीजिए एक नॉनस्टिक पैन या बड़ी सी कढ़ाई, फिर इसमें डालिए शुद्ध देसी घी, उसके बाद इसमें ताजा नारियल और गुड़ डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए पकाइए। इसे पकाते समय गैस को लो फ्लेम पर ही रखें, अदरवाइज ये मिश्रण जल सकता है और आपकी मेहनत बेकार ना हो, इसलिए आपको प्रिकॉशन लेनी है। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद इसमें ऐड कीजिए सब्जा के बीज। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट के बाद ये मिश्रण रेडी हो जाएगा और तब तक इसे अच्छे से पकाते हुए आपको चम्मच चलाते रहना है। गुड़ और नारियल का टेक्सचर जब एक साथ मिलेगा तब इसे टेस्ट करने के लिए आपका मन जरूर ललचाएगा। लेकिन लेकिन लेकिन अभी कर लीजिए थोड़ा इंतजार, क्योंकि सब्जा के लड्डू चखने के लिए हम भी बैठे हैं कब से बेकरार। अब आगे क्या करें तो भाई सुनिए, आगे हमें ये करना है कि इस मिश्रण में ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और जायफल पाउडर को डालना है। इसे भी मिक्स करते हुए धीमी आंच पर पकाना है। ऐसा करते समय आपका किचन मनमोहक खुशबू से भर जाएगा। फिर आप गैस को बंद कर दीजिए, इस मिश्रण को ठंडा होने दीजिए और तब तक हमें वेट करना है। लड्डू बनाने का मिश्रण अब थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। इसके लिए आप एक बड़ी सी प्लेट लीजिए, फिर अपने हाथों पर आप थोड़ा सा घी लगाइए। उसके बाद तैयार मिश्रण से नींबू के साइज के लड्डू को बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर एक एक करके सब्जा के सारे लड्डुओं को आप उस प्लेट में रख दीजिए। जब सारे लड्डू तैयार हो जाए तब लगभग एक घंटे तक उन्हें सूखने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, या तो आप उन्हें फैन के नीचे भी रख सकते हैं। क्योंकि ये लड्डू हमने ताजे नारियल को यूज करके बनाए हैं, इसलिए इन्हें फ्रिज में रखना बेहतर होगा। इन लड्डुओं को एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप फ्रिज में ही स्टोर कीजिए। वैसे ये सब्जा लड्डू होते हैं इतने टेस्टी कि झटपट खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन फ्रिज में एटलीस्ट एक हफ्ते तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आपको जब भी इन्हें खाने का मन करे तब आप आधा घंटा पहले इन्हें बाहर निकाल कर रखें। ऐसा करने से इसका ठंडापन कम होकर ये रूम टेम्परेचर वाले हो जाएंगे। इस तरह से हमारे टेस्टी और हेल्दी सब्जा के लड्डू हो गए हैं तैयार। सुबह के नाश्ते में आप इन सब्जा के लड्डुओं को जरूर खाएं। ऐसा करने से आप दिन की शुरुआत एक हेल्दी तरीके से करेंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस सब्जा के लड्डू की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है गोल मटोल लड्डू। गोल मटोल से मीठे लड्डू बनाने डाला सब्जा, इसका टेस्ट है ऐसा अनोखा कि मेरे दिल पर किया कब्जा। जब जब देखूं मैं थाल में भरे ये मीठे मीठे लड्डू, तब सारा डाइटिंग भूलकर इन पर हो जाऊं लट्टू। जब जब हो जाता संगम घी गुड़ और कोकोनट, तब इनका सेवन करके आप जरूर पाएंगे हेल्दी गट। देसी घी और ब्राउन गुड़ देगा इतनी ताकत कि बीमारी रहेगी दूर और ना आएगी कोई आफत। लड्डू में भी छुपे हैं सेहत से जुड़े कुछ राज, हमारे शो में शामिल है रेसिपीज और सुरीले साज। जब होगी ऑडियंस जी किचन में आपकी एंट्री, तब लगाइए आचार्य 90 FM और सुनिए गाने, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री। अब बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। हमारी अगली रेसिपी का नाम है क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। गर्मी के लिए ये बेहद ताजगी भरा और हाइड्रेटिंग ड्रिंक है।

इसे घर पर बनाना एकदम आसान है। खीरा, नींबू, पुदीना डालकर बनाया गया ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको चिलचिलाती धूप में तुरंत ठंडक और एनर्जी देगा। यूजुअली मॉकटेल में ताजे फलों का रस, सिरप, जड़ी बूटियां और सोडा या कार्बोनेटेड पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वर्जिन पिनाकोलाडा, वर्जिन मोहितो, स्ट्रॉबेरी लेमनेड और सिंड्रेला ऐसे कई सारे मॉकटेल्स फेमस हैं। क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल ये ड्रिंक लैटिन अमेरिकन अगुआ फ्रेस्का और इंडियन खीरा नींबू शिकंजी का लेटेस्ट वर्जन है। वैसे दुनिया भर के कैफे में ये काफी फेमस है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। क्यूकम्बर मीन्स खीरा, म्हणजे आपली काकड़ी, एक बड़ी सी। नींबू का रस 2 बड़े चम्मच। पुदीने की पत्तियां 10 से 12। चीनी या शहद स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 2 चम्मच चीनी ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए काला नमक 1 चुटकी, स्प्राइट 2 ग्लास, बर्फ के टुकड़े 4 या 5, ये ऑप्शनल है। अब हम क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए। फिर आगे क्या, आगे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हम बना रहे हैं क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। ककड़ी को हमने अच्छे से धो तो लिया है। इसे यूज करने से पहले आप उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे टेस्ट कीजिए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि कड़वी ककड़ी मीन्स खराब ककड़ी। हमें नॉर्मल टेस्ट वाली ककड़ी को यूज करना है। फिर उस ककड़ी को आप बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद हमें लेना है मिक्सर का जार। उस जार में हम डालेंगे खीरा मीन्स ककड़ी के टुकड़े और पुदीना के कुछ पत्ते। इसके साथ आधा कप पानी डालकर हमें इसका पेस्ट बनाना है। जब तक ये मिश्रण एकदम स्मूथ ना हो तब तक हमें इसे मिक्सर में पीसना है। इसका स्मूथ पेस्ट बनने के बाद क्या करें? तो भाई अब हमें इसे छानना है। इसके लिए हमें चाहिए एक छलनी। उस छलनी की मदद से इस पेस्ट को हम छान लेते हैं। ऐसा करने से खीरा मीन्स क्यूकम्बर के रेशे अलग हो जाएंगे। फिर उस छाने हुए स्मूथ जूस को हम एक बर्तन में निकालेंगे। अब उसमें मिलाना है नींबू का रस, शक्कर और थोड़ा सा नमक। फिर एक चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लीजिए 2 सर्विंग ग्लास। फिर हमेशा वाला क्रिस्टल डेकोरेशन मीन्स नमक और शक्कर वाला डेकोरेशन करना है। उन ग्लास के किनारों को आप थोड़ा पानी लगाइए। उसके बाद एक छोटी प्लेट में हम लेंगे 1 चम्मच शुगर पाउडर और 1 चम्मच नमक। इस प्लेट में नमक और शक्कर को मिक्स करना है। अब उन गीले किनारों वाले ग्लास को उस प्लेट में पलट दीजिए। I mean to say उन्हें अपसाइड डाउन करके उस प्लेट में रखिए। फिर एकदम आराम से उन्हें सीधे रखिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल डेकोरेशन वाला प्रोफेशनल लुक आएगा। उसके बाद क्या करना है तो जनाब अब सुनिए आगे। अब बड़ी नजाकत से उन ग्लास में हम डालेंगे क्यूकम्बर लाइम का जूस। आप चाहे तो सबसे पहले बर्फ के कुछ टुकड़े डालिए और फिर क्यूकम्बर लाइम का जूस डालिए। वैसे मुझे पर्सनली विदाउट आइस वाले मॉकटेल्स ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब उस क्यूकम्बर लाइम जूस के ऊपर हमें डालना है स्प्राइट। फिर इस मिश्रण को एक चम्मच की मदद से आप मिक्स कीजिए। अब बारी आती है फाइनल टच की। उस ग्लास के किनारों पर हम लगाएंगे नींबू की पतली स्लाइस और उसके साथ रिफ्रेशिंग पुदीना की एक सुंदर सी पत्ती। अब इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल की सुंदर छवि को आप कीजिए अपने मोबाइल कैमरा में बंद, क्योंकि इसे टेस्ट करने लम्हे बचे हैं चंद। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए आप इसमें चुटकी भर ग्रेटेड अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज विदाउट जिंजर भी इसका टेस्ट एकदम कमाल का ही होगा। इस तरह हमारा क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल हो गया है एकदम तैयार। और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हैं एकदम बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट अपने किचन में जाइए और फटाफट से क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल को बनाइए। इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है राहत वाला मॉकटेल। झुलसती सी गर्मी से जब पानी हो राहत और ककड़ी को खाने की मुझे हो चाहत, तब क्यों जाए हम कोई रेस्टोरेंट या होटल, घर में ही बनाएंगे टेस्टी और रिफ्रेशिंग मॉकटेल। गर्मी से बेहाल होकर आए जब पसीना, तब ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक मांगे कोई हसीना, उस वक्त जरूर पेश कीजिए अनोखा सा नगीना जिसमें है खीरा और रिफ्रेशिंग पुदीना। खीरा और पुदीना संग डालो थोड़ा स्प्राइट, इसको सिप करके एक्सप्रेशन दो ब्राइट। इसका टेस्ट निखारने डालो थोड़ी सी शक्कर,
क्यूकम्बर पुदीना मॉकटेल गर्मी को देगा टक्कर। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न वाले कल्चर का ये मेल मींस किचन में कलाकारी दिखाने वाला खेल। आपकी उपस्थिति से स्वाद का जायका में आई है बहार। सोमवार और शुक्रवार के इंतजार में भारतीय सीमा हुई बेकरार। इस शो पर बनाएंगे हम टेस्टी टेस्टी खाना। आगे बात होगी और पहले सुनिए अगला गाना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के इस शो पर सबसे पहले हमने बनाए हेल्दी वाले सब्जा के लड्डू। अलियू मींस हलीम के लड्डू की रेसिपी से मेल खाने वाले इन लड्डुओं को बनाकर हमने हमारी और हमारे प्यारे ऑडियंस की दोस्ती की मिठास बढ़ाने की एक कामयाब कोशिश की है कि नहीं। जी बिल्कुल की। ताजा नारियल, गुड़, सब्जा के बीज को घी और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर बड़े प्यार से हमने हेल्दी लड्डू बनाए। उसके बाद हमने बनाया वेस्टर्न स्टाइल वाला एक मॉकटेल जिसका नाम था क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। इसे बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया खीरा मींस ककड़ी, उसके साथ पुदीना और स्प्राइट, जिसने टेम्परेचर को कम करने की दी हाइट। इसे खूबसूरत बनाने के लिए प्रोफेशनल टच देने के लिए हमने नमक और शक्कर को मिक्स करके क्रिस्टल डेकोरेशन भी किया। इस प्रकार से हमने हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए गर्मी सीजन स्पेशल सुपर कूल रेसिपीज को पेश किया। आई होप दैट आपको हमारी आज की रेसिपीज अच्छी ही लगी होगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपसे मिलती रहूंगी हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे। अर्ज किया है, जिक्र करते हैं ऑडियंस जी हवा से, अब सोमवार और शुक्रवार आएगा कब? जब भी होती है आपसे मुलाकात तब लगता है ऐसे जैसे धूप में हो बरसात। हमारे इस स्टूडियो में होता है ऐसा दृश्य जैसे आसमान में बिखरा सतरंगी इंद्रधनुष। स्वाद के जायके का म्यूजिकल मेल मींस हेक्टिक स्केड्यूल में मनोरंजन का खेल। सोमवार और शुक्रवार की मुलाकात का ये वादा आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।